अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

श्री राम लला भगवान की, श्री आनंद चंद भगवान की, श्री कौशल्यानंदन भगवान की, श्री दशरथ नंदन भगवान की, श्री कैकेयी नंदन भगवान की, श्री सुमित्रानंदन भगवान की, श्री चारों भैयन की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, श्री काशी विश्वनाथ की, श्री अयोध्या धाम की, श्री सरयू महारानी की, जगत गुरु स्वामी श्री अमानंदाचार्य जी महाराज की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, समस्त पूर्वाचार्यों की, सर्व संत वैष्णव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, गो माता की, भारत माता की, प्रातः श्रृंगार आरती की, जय जय श्री सीताराम।

याद की जाए ते पवन सुत हनुमान की जाए ते उमापति महादेव की ते रमापति रामचंद्र की जय ते वृंदावन कृष्ण बलदाऊ की जय बोलो भाई सब संग।

0: ये आकाशवाणी का आराधना चैनल है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी श्रीनगर के बालटाल और पहलगाम से अमरनाथ यात्रा पर विशेष प्रसारण।
1: श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के इस विशेष प्रसारण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अशफाक और आज के इस विशेष प्रसारण में अगले कई घंटों तक आपकी सेवा में उपस्थित रहूंगा। यात्रा से जुड़ी हर महत्वपूर्ण और ताजा जानकारी, प्रशासनिक सूचनाएं, मौसम के समाचार तथा यात्रा के हर पल की गतिविधियों से हम आपको निरंतर अवगत कराते रहेंगे। आप इस विशेष प्रसारण को आकाशवाणी के FM बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज, FM पहलगाम 100.7 मेगाहर्ट्ज, OTT प्लेटफॉर्म वेव्स, न्यूज़ॉन AIR ऐप के आराधना चैनल तथा DTH के माध्यम से भी सुन रहे हैं। तो आइए इस पवित्र प्रसारण का शुभारंभ करते हैं।

आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण, और इस प्रसारण को आप आकाशवाणी के FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.7 MHz, OTT प्लेटफॉर्म वेव्स, न्यूज़ ऑन AIR ऐप के आराधना चैनल तथा DTH के माध्यम से भी सुन रहे हैं। हम फिर से आप सभी श्रोताओं का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा से संबंधित हर महत्वपूर्ण समाचार और ताज़ा जानकारी हम निरंतर आप तक पहुंचाते रहेंगे।

0: आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण। यात्रा से जुड़ी हर महत्वपूर्ण सूचना और ताज़ा जानकारी हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। और अब समय है यात्रा की वर्तमान स्थिति और जम्मू से मिल रहे ताज़ा जानकारी का। इसलिए अब हम जम्मू का रुख करते हैं और जम्मू से हमारे संवाददाता श्री जावेद मेहराब साहब इस समय फोन लाइन हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। जम्मू में यात्रा को लेकर क्या माहौल है, श्रद्धालुओं की आवाजाही और तैयारियों को लेकर क्या ताज़ा जानकारी मिल रही है, इसी पर उनसे सीधे बात करेंगे। जावेद साहब, आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत है। बताइए, इस समय जम्मू से क्या ताज़ा जानकारी है?
1: जी, बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि हम हर रोज कोशिश करते हैं कि अपने श्रोताओं तक तीर्थ यात्रा के सिलसिले में जानकारी को साझा करें, और उसी सिलसिले में तीर्थ यात्रा जो है वो उसी विश्वास और आस्था के साथ यहाँ चल रही है। और इस बीच जम्मू चूंकि पहला आधार शिविर भी है इस पवित्र तीर्थ यात्रा का, तो यहाँ लगातार देश के विभिन्न भागों से तीर्थयात्री जो है वो रेल और सड़क के माध्यम से लगातार पहुंच रहे हैं। और दूसरा सप्ताह है इस तीर्थ यात्रा का, और अभी तीर्थयात्री जो है देश के विभिन्न भागों से जो यहाँ पहुंच रहे हैं उनके थमने का जो सिलसिला है वो अभी बिल्कुल उसी तरह जोश खरोश के साथ चल रहा है, और वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। मेरा मतलब ये है कि तीर्थ यात्रा जो है वो बराबर जारी है, और जो यात्री है जो विभिन्न भागों से यहाँ पहुंच रहे हैं वो लगातार उसी जोश खरोश के साथ यहाँ पहुंच भी रहे हैं। इस बीच सिर्फ प्रशासन अधिकारी और पुलिस और जो व्यवस्थाएं हैं उनका जो पहला काम होता है तीर्थ यात्रा को अनुशासित तरीके से चलाना, उसके लिए उन्होंने लगभग इस तीर्थ यात्रा के शुरू होने से पहले ही इंतजामात को आखिरी शक्ल दी थी, और आज भी वो बराबर जारी है। उसमें कई बदलाव रोज किए जाते हैं, समीक्षाएं की जाती हैं, और न सिर्फ ये व्यवस्थाओं को लेकर बल्कि जो सुविधाएं हैं और उसके अलावा जो यहाँ प्रशासनिक अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो लगातार इस यात्रा को बेहतर रूप में और बेहतर तरीके से चलाने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध भी है, और उसमें खास तौर पर स्वयंसेवी संस्थाएं और यहाँ के आम लोग जो है वो बराबर जुड़े भी हुए हैं और साथ भी दे रहे हैं। उसमें बाजार एसोसिएशंस हैं, अलग अलग जो संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, वो पूरी तरह से इस तीर्थ यात्रा के साथ पिछले दो सप्ताह से लगातार जुड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से तीर्थ यात्रा जो है वो एक अनुशासित तरीके से चल भी रही है। आज भी पवित्र श्री अमरनाथ जी की यात्रा मंगलवार को भी आध्यात्मिक उत्साह के साथ यहाँ भगवती नगर के आधार शिविर से सुबह तड़के रवाना हुई। सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच बाबा बर्फानी के फलक शिगाफ नारे तवी के तट पर बने इस आधार शिविर में गूंज रहे थे। याद रहे कि अब पवित्र गुफा बाबा बर्फानी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा भी लगभग 2,52,000 तक पहुंच गया है। एक बड़ा आंकड़ा है पूरे देश भर के लिए, क्योंकि ये एक ऐसी अकेली

0: तीर्थ यात्रा है जिसमें प्रशासनिक जो बाजाबता इंतजाम होता है और उसके अलावा जो सारी स्वयंसेवी संस्थाएं आम लोग सारी ये 2 महीनों की तीर्थ यात्रा जो है मुल्क भर की मुझे लगता है कि पहली यात्रा है जिसमें सभी तरह की जो सुविधाएं हैं मुफ्त भी दी जाती हैं और ख्याल भी रखा जाता है तीर्थ यात्रियों का और इस बीच सभी तरह की नए बदलाव हर दिन देखने को मिलते हैं जिसमें तीर्थ यात्रियों के रहने और इस तीर्थ यात्रा के जाने से पहले वक्फे के दौरान यहाँ जम्मू की ऐतिहासिक धरोहरों को देखना, यहाँ की विरासत को, यहाँ के कल्चर को, खानों को, ये पूरा पिछले 2 सप्ताह से जम्मू में मेला ही चल रहा है। हर तरफ आप देख सकते हैं चौक चौराहों के नजदीक यहाँ हिस्टोरिकल जो बाजार है, रघुनाथ बाजार है, पुराना शहर जितना है उस तरफ आप हर तरफ तीर्थ यात्रियों को खरीदारी करते भी देख सकते हैं, यहाँ पर घूमते भी देख सकते हैं। और हालांकि जो यहाँ की मौसमी सूरत हाल है जम्मू की बनिस्बत कश्मीर के, एक अलग तरह की मौसमी हालात भी है यहाँ,
1: जी,
0: गर्मी, उमस और उसके बीच सभी तरह का के प्रशासनिक अधिकारी और बाकी जो लोग हैं वो अपनी ड्यूटी बेहतर तौर पर अंजाम भी दे रहे हैं जिसकी वजह से यात्रा कामयाब भी चल रही है। वहीं यहाँ जम्मू के मंदिरों में पूजा अर्चनाएं, भंडारों, लंगरों की धूम है और जो लोग हैं वो इन भंडारों और लंगरों में खुलकर साथ देते हैं और इसमें हिस्सा भी लेते हैं ताकि जो विभिन्न व्यवस्थाएं हैं उसमें हिस्सा लिया जाए और तीर्थ यात्रियों की सेवा की जाए और इस सेवा के बदले कुछ लोग परिवार सहित भी यहाँ पहुंचते हैं सेवा के लिए, तीर्थ यात्रियों का आशीर्वाद और जो यहाँ साधु संत देश भर से पहुंचते हैं उनके साथ मिलकर भी उनका भी अपना एक मन होता है कि उनकी सेवा की जाए और वो उसके बदले वो एक आशीर्वाद भी लेते हैं। हम यहाँ मंदिरों और धर्मशालों में ये सीन भी देखते हैं कि किस तरह से ख्याल रखा जा रहा है। इस बीच बिजली पानी का भी ख्याल कर्मचारी और प्रशासन रख ही रही है और इसमें खास तौर पर प्रायोरिटी होती है कि गर्मी के दौरान बिजली की आपूर्ति ना हो और बिल्कुल पूर्ति के साथ बिजली बनी रहे, पानी की व्यवस्था में कोई कमी ना हो और किसी तरह से कोई तकलीफ जो तीर्थ यात्रियों को है वो ना हो, उसको लेकर खास तौर पर ख्याल रखा जाता है। वही ये तीर्थ यात्रा का पर्व निहायत ही आस्था, खुशी और विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है और प्रशासन के जो अधिकारी हैं या छोटे कर्मचारी भी जो है वो भी इस यात्रा को सफल आयोजन के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं और ट्रांजिट कैंप्स में बुनियादी इंतजाम की देख रेख और तीर्थ यात्रियों को दी जाने वाली व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना हर प्रतिदिन के साथ एक नए चैलेंज के साथ आसान भी नहीं होता है, लेकिन उसको आसान बनाया जाता है बदलाव के साथ। और इस दौरान स्वच्छता की बड़ा ख्याल रखा जाता है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की टीमें चारों तरफ इन ट्रांजिट कैंप्स में सुबह से ही लगी होती है, शाम अलग सफाई होती है, सुबह अलग सफाई होती है ताकि वातावरण भी स्वच्छ रहे क्योंकि गर्मी का मौसम है, उमस का मौसम है, इस बीच ख्याल भी रखा जाता है। तो एक एक बेहतर वातावरण बना हुआ है तीर्थ यात्रा का और जो लगातार चल रहा है और उसकी जो गाइड जो जो यहाँ नए जो तीर्थ यात्री पहुंच रहे हैं उन्हें भी इसी तरह से गाइड किया जाता है ताकि प्राथमिकता के साथ और विश्वास के साथ और आस्था के भाव के साथ ये जो यात्रा है वो बनी रहे। इस बीच सरकार ने एक राही बस सर्विस भी शुरू की थी, वो लगातार चल रही है। हर रोज तीर्थ यात्री जम्मू भ्रमण पर निकलकर जम्मू की विरासत, ऐतिहासिक जैसे मैंने कहा कि मंदिर, पर्यटन स्थल, यहाँ के कल्चर को देखने का
1: जी
0: भी
1: जी
0: उन्हें मौका मिलता है और बाबा बर्फानी की तीर्थ यात्रा के दौरान अपने बारी के वक्फे में वो कई लोग माता वैष्णो देवी के दौर की तरफ भी जाते हैं क्योंकि यहाँ से माता वैष्णो देवी का दौर भी एक 2 घंटे का सफर है। तो उसको जब उन्हें मौका मिलता है यहाँ वक्फा लिया जाता है तीर्थ यात्रा से जाने से पहले क्योंकि हर एक को अपनी बारी का इंतजार करने के बाद ही मौका दिया जाता है तीर्थ यात्रा के लिए और ये अनुशासित तरीके से चल चलता आ रहा है। इसीलिए यहाँ जो मुख्य द्वार लखनपुर का है, वहां से लेकर यहाँ तक जो है जम्मू पूरे एंड तक, यहाँ अलग अलग ट्रांजिट कैंप्स बनाए गए हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसे विजयपुर है, कठुआ है, सांबा है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, या रेलवे स्टेशन के बाहर भी एक बहुत बड़ा ट्रांजिट कैंप बनाया गया है, ताकि तीर्थयात्रियों को एक ही जगह एकत्रित ना किया जाए, उनकी जो उनको एक अनुशासित तरीके से पहले उनका रजिस्ट्रेशन हो, रजिस्ट्रेशन के बाद जब उनकी डेट फाइनल हो तब जाके उन्हें इजाजत दी जाती है भगवती नगर के आधारेश्वर तक पहुंचने के लिए। तो एक अनुशासित तरीके से ये तीर्थ यात्रा निकल रही है। आज भी लगातार मैं कह रहा हूँ कि जब से ये तीर्थ यात्रा शुरू हुई है, तब से हजारों तीर्थ यात्री रोजाना तीर्थ यात्रा पर घाटी की ओर बाबा बर्फानी के पवित्र गुफा की तरफ दर्शन के लिए निकल रहे हैं, और आज भी 5,335 तीर्थ यात्री इस भगवती नगर के आधार शिविर से घाटी की ओर रवाना हुए हैं, जिसमें बालटाल की तरफ 1,736 और पहलगाम की तरफ 3,599, जिसमें पुरुषों की संख्या 3,911 और महिलाएं 1,288 रही। ये आंकड़े देने का हमारा मतलब सिर्फ ये होता है कि उस जो ये जिस बात को हम कह रहे हैं कि जिस आस्था, जोश और विश्वास के साथ ये आस्था ये यात्रा चल रही है, ये आंकड़े उसी को दर्शाते हैं, वरना इन आंकड़ों का कोई मतलब नहीं है। तीर्थ यात्रा रोजाना यहाँ से उसी विश्वास, उसी जोश खरोश के साथ निकल रही है, और आंकड़े हमें उस बात का सबूत होते हैं कि बराबर हजारों की तादाद में यहाँ से तीर्थ यात्री पवित्र गुफा के दर्शन के लिए बराबर यहाँ से रोजाना रवाना हो रहे हैं। और इस बीच हजारों तीर्थयात्री यहाँ जम्मू के इस शहर में पहुंच भी रहे हैं, जो इनका पहला पड़ाव है जम्मू, जहाँ देश के विभिन्न भागों से यहाँ लोग पहुंच रहे हैं। तो यहाँ हजारों की तादाद में जहाँ तीर्थयात्री पहुंच भी रहे हैं, वहीं यहाँ से भगवती नगर आधार शिविर से घाटी की ओर रवाना भी हो रहे हैं, और दर्शन कर वापस भी यहीं पहुंच रहे हैं। और जो लोग किसी वजह से जम्मू शहर के को नहीं देख पा रहे होते हैं, जिन्होंने इस दौरान वो अपना सफर पूरा करके मतलब पवित्र गुफा के दर्शन
1: जी
0: करने के बाद जम्मू में एक या दो दिन रहते हैं, और यहाँ माता वैष्णो देवी और दूसरे जो यहाँ धार्मिक स्थल है उनका भ्रमण करते हैं, वहाँ पहुंचते हैं, पूजा अर्चनाओं में हिस्सा लेते हैं। तो कुल मिलाकर जो जम्मू में एक पिछले 2 सप्ताह से बेहतर माहौल बना हुआ है, और यात्रा बहुत अच्छे वातावरण में घाटी की ओर रोजाना रवाना हो रही है। जी
1: बहुत बहुत धन्यवाद जावेद मेहराब साहब, जम्मू से यात्रा की ताज़ा स्थिति और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए आपका आभार, बहुत बहुत
0: बहुत शुक्रिया।
1: जी। जम्मू से यात्रा की वर्तमान स्थिति से अवगत कराने के लिए जावेद साहब के बहुत बहुत आभार हैं हम, और फिलहाल इस विशेष प्रसारण को हम आगे बढ़ाते हैं, लौट आएंगे फिर से यात्रा से जुड़ी और भी ताज़ा जानकारियों के साथ, आप बने रहिएगा।

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। आप इस विशेष प्रसारण को आकाशवाणी के एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.7 मेगाहर्ट्ज़, ओटीटी प्लेटफॉर्म व्यूज न्यूज ऑन एआईआर ऐप की आराधना चैनल तथा डीटीएच के माध्यम से भी सुन रहे हैं। श्रोताओं, जम्मू से हमने यात्रा की स्थिति और महत्वपूर्ण जानकारी सुनी, अब आगे बढ़ते हैं। श्री अमरनाथ जी, यात्रा के दौरान जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति हर यात्री के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। राजमार्ग पर यातायात की वर्तमान स्थिति और अन्य ताजा जानकारियों के लिए रुख करते हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद तस्कीन की ओर, जो इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद तस्कीन साहब, आपका स्वागत है, बताइए राष्ट्रीय राजमार्ग से इस समय क्या ताजा जानकारी है?
1: जी, बहुत शुक्रिया। राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक चल रहा है, यात्रा का ट्रैफिक चल रहा है। जो काफले आज अलल सुबह बहुत सवेरे जम्मू से निकाले गए हैं, बालतल और पहलगाम के रास्ते जो पवित्र गुफा की तरफ जा रहे हैं, तो इस वक्त जो बालतल का जो बहुत पहले निकलता है जम्मू से, जिसका टाइमिंग पहलगाम वाले से थोड़ा आधा घंटा एक घंटा पहले होता है, तो वो इस वक्त रामबन डिस्ट्रिक्ट में एंटर हो चुके हैं और बानहाल की तरफ बढ़ रहे हैं, जो इनका जम्मू डिवीजन में आखिरी पड़ाव होता है श्री अमरनाथ यात्रा का। बानहाल का लांबर ग्राउंड, जहां पर इनके लिए इंतजाम रखे गए हैं कि उस सुबह जो नाश्ता वगैरह का कराया जाता है, तो इसी तरह जो पहलगाम का जो कदरे देर से निकलता है जम्मू के भगवती नगर इलाके से, तो वो भी इस वक्त रामबन डिस्ट्रिक्ट में मतलब चिनानी नाशरी टनल क्रॉस करके रामबन डिस्ट्रिक्ट की तरफ बढ़ रहा है। कुल मिलाकर आज 5,335 यात्री दोनों काफलों में शामिल हैं, जो 232 गाड़ियों में सवार हैं, तो हाईवे से गुजर कर ये बानहाल की तरफ बढ़ रहे हैं, जो जम्मू डिवीजन में इनका आखिरी पड़ाव होता है। तो यहाँ के बाद इन्हें कश्मीर की जो सिक्योरिटी सेटअप है, सिक्योरिटी इंतजाम है, उनके हवाले किया जाता है और बानहाल तक जम्मू डिवीजन की जो इंतजामिया है उसकी जो देख रेख और उसके इंतजाम में यात्रा को लाया जाता है। तो मौसमी सूरतहाल कहेंगे तो मौसम आज सुबह से धूप निकली, हालांकि कल परसों दो दिन लगातार बादल बने हुए थे, बादलों का सिलसिला जारी था, लेकिन आज सुबह से धूप निकले। लेकिन मजमुई तौर पर जो कहेंगे तो पूरे इस क्षेत्र में जो रामबन बानहाल क्षेत्र है, तो इसमें मौसम जो है खुशगवार है, बेहतर है, क्योंकि पिछले कई रोज से बारिशें हो रही हैं और कल भी पूरा दिन जो है बादल बने हुए थे, तो इस वक्त जो मौसम बिल्कुल बेहतर है। इस दौरान आपको ये बताएं कि जो रोजाना काट ऑफ टाइमिंग होता है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर जो रखा गया है तीर्थ यात्रियों के लिए, श्री अमरनाथ यात्रियों के लिए, तो उस जो

0: कट ऑफ टाइमिंग रखी गई
1: हम्म,
0: है, जैसे इनके लिए जो रात का ट्रैफिक 2 बजे और 3 बजे के बाद रामबन डिस्ट्रिक्ट में पहुंचता है, तो 2 बजे
1: जी
0: बाद उन्हें रामबन से आगे बढ़ने की इजाजत नहीं होती, और 3 बजे बाद कश्मीर की तरफ ना टूरिस्ट गाड़ियों को और ना ही यात्रा गाड़ियों को चलने की इजाजत दी जाती है। तो यही रोजाना करीबन 1,000, 1,500, 2,000 के करीब जो यात्री और टूरिस्ट पहुंचते हैं रामबन डिस्ट्रिक्ट में, तो उन्हें भी आज अलल सुबह यहाँ रामबन और बानहाल से उन्हें पहले 5-6 बजे के दरमियान निकाला जाता है कश्मीर की तरफ बाजाब्ता सिक्योरिटी के बंदोबस्त में। तो उन गाड़ियों को भी आज अलल सुबह ही यहाँ से रवाना करके कश्मीर की तरफ रवाना किया गया है। तो आइंदा उम्मीद है कि 2-3 घंटों में, जैसे कल 11:30-12 बजे तक, क्योंकि कल एक इंसिडेंट भी हुआ था उस वजह से थोड़ा ताखिर हुआ था कश्मीर में इंटर होने के लिए यात्रा को, तो उसी हिसाब से कहीं 11:30-12 बजे के दरमियान जो यात्रा का ट्रैफिक होता है उसे कश्मीर की तरफ रवाना किया जाता है या बानहाल से,
1: जी
0: यानी बानहाल काजीगुंड टनल को क्रॉस कराया जाता है। इस दौरान जो बाकी मुसाफिर ट्रैफिक है, 7 बजे के बाद जम्मू से ट्रैफिक को छोड़ दिया गया है, जो पैसेंजर्स ट्रैफिक है उसे 7 से 12 बजे तक नगरोटा क्रॉस करने की हिदायत दी गई है। इसी तरह 8 से 1 बजे तक उन्हें उधमपुर क्रॉस करना होगा कश्मीर की तरफ, और कश्मीर से जो ट्रैफिक है यात्रा गुजरने के बाद जो बानहाल काजीगुंड टनल है इसे जब क्रॉस करा जाता है टनल यात्रा को, दोनों काफिलों को, तो उसके बाद जो काजीगुंड में सुबह से ही ट्रैफिक रोका जाता है, यात्रा के जो बंदिशें हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस रखी गई हैं ट्रैफिक प्लान के मुताबिक, तो उन्हें 11:30 बजे बाद जम्मू की तरफ छोड़ दिया जाएगा। तो मजमुई तौर पर जो हाईवे का जो पिछले दिनों से अगर कहेंगे रवैया बिल्कुल बेहतर रहा है, बारिशों के बावजूद कोई बाधा नहीं आई है, कोई ट्रैफिक में खलल नहीं पड़ा है, मजमुई तौर पर जो बहुत सामान्य तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से हाई का ट्रैफिक चल रहा है और यात्रा आगे बढ़ रही है कश्मीर की तरफ।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद तस्कीन साहब। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की वर्तमान स्थिति और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए। निश्चित रूप से ये जानकारी यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत शुक्रिया
1: जी। श्रोताओं, आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम जल्दी लौट आएंगे।

0: श्री अमरनाथ जी, यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप समाप्त कर रहे हैं। हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। श्री अमरनाथ जी, यात्रा से संबंधित हर महत्वपूर्ण समाचार और ताजा जानकारी हम निरंतर आप तक पहुंचाते रहेंगे और यात्रा से जुड़ी ताजा जानकारी आप तक पल पल हम पहुंचाते रहेंगे। अभी एक और महत्वपूर्ण पड़ाव की ओर चलते हैं। रुख करते हैं पहलगाम का, जहां से यात्रा की गतिविधियों, श्रद्धालुओं की आवाजाही और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर हमारे संवाददाता एस तारिक साहब इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एस तारिक साहब, आकाशवाणी की इस विशेष प्रसारण में आपका हार्दिक स्वागत है। बताइए, पहलगाम से इस समय क्या ताजा जानकारी है?
1: बहुत शुक्रिया अशोक साहब। प्रिय श्रोताओं को मेरा शुभ प्रभात। बाबा बर्फानी के रमियों की अध्यात्मिक यात्रा आस्था सफलता और सुखद तरीके से जारी है। खुशगवार मौसम के बीच आज सुबह 4 बजे गनवन आजाद क्षेत्र से हजारों भक्तों पे मुश्तमिल जत्था चिंदनवारी पहुंच चुका है, जहां से वो अगले पड़ाव शिशनाग और पंचतरणी के लिए अपनी पदयात्रा का आगाज करेंगे। इधर निजी होटलों और हटों में मुकीम तीर्थयात्री भी चंदनवारी में पंचक्रियन की कार्रवाई मुकम्मल करके पवित्र गुफा की जानब आगे बढ़ने की तैयारी में मसरूफ है। शिशनाग और पंचतरणी में पहले से मौजूद यात्री बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा की जानब रवाना हो चुके हैं, जो पिट्ठू जबकि पिट्ठू वाले घोड़े बान और पालकी वाले यात्रियों की सहूलत के लिए पूरी तरह तैयार और कमर बस्ता है। इधर जम्मू के भगवती नगर आजाद क्षेत्र से 5,335 यात्रियों पर मुश्तमिल पहलवा जत्था नवयुवक टर्नोबुल करके आज कश्मीर घाटी में दाखिल होगा। ये जत्था दोपहर तकरीबन 12 बजे रेंजर कब काजीपुर पहुंच पाएगा, जहां से बालतर और पहलगाम के लिए अलग अलग जत्थे रवाना किए जाएंगे। इनमें बालतर मार्ग के लिए 1,735 यात्री, जबकि पहलगाम के प्राचीन मार्ग के लिए 133 छोटी बड़ी वाहनों में 3,599 यात्रियों पर मुश्तमिल जत्था सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के बीच रवाना होगा। इन यात्रियों में 2,692 पुरुष, 774 महिला, 9 साधु, 20 साधवी, 16 बालक और 1 ट्रांसजेंडर शामिल है। और सोलह शुमार के मुताबिक इन जिले से अब तक मजमू तौर पर 2,53,814 भक्तों को बाबा बर्फानी के दर्शन का सौभाग्य हासिल हो चुका है, जबकि गुजश्ता शब दर्शन करने वाले यात्रियों की तादाद 26,403 रही। प्रशासन के जानिब से नॉन वेज कैब समेत पूरी यात्रा मार्ग पर यात्रियों के लिए तमाम जरूरी सहूलियात और एसेंशियल कमोडिटीज दस्तियाब रखी गई है। सरकारी और गैर सरकारी सैकड़ों लंगरों में यात्रियों के लिए

0: मकान और भोजन की व्यवस्था की गई है, जबकि सरकारी अधिकारियों के साथ साथ हजारों सेवादार भी यात्रियों की सेवा में मसरूफ है। तो पहलगाम की जब बात आ जाए तो मौसम की बात आ ही जाती है, तो मौसम विभाग के अनुसार यात्रा मार्ग पर फिलहाल मौसम अनुकूल बना हुआ है। तमाम पहाड़ी इलाकों में समय समय पर मौसम में परिवर्तन आता रहता है। मौकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त पहलगाम से पवित्र गुफा तक दर्जी हरारत 15 डिग्री सेल्सियस है, जबकि दिन के वक्त ये बढ़कर 22-23 डिग्री तक बढ़ सकता है। अमरनाथ यात्रा के लम्हा पर लम्हा निगरानी के लिए हाईटेक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पहले ही कायम किए जा चुके हैं, जो किसी भी मसले या शिकायत का फौरी हल निकालते हैं, अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। इस कमांड सेंटर में सिक्योरिटी फोर्सेज, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, ट्रैफिक पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, मौसम विभाग और स्वास्थ्य विभाग तमाम लगभग तमाम मुतलका विभागों के नुमाइंदे तैनात है। इस तरह के मरमू निजाम की मदद से प्रशासन और मुख्तलिफ लाइन डिपार्टमेंटल बाहर भी समन्वय के साथ काम कर रहे हैं, जहाँ तमाम फैसले समूहनीय तरीके से लिए जाते हैं। इस पूरे निजाम की निगरानी राज्यपाल उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा बजाय खुद कर रहे हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और दीगर वरिष्ठ अधिकारी लगातार पहलगाम और बालतल मार्ग का दौरा करते रहते हैं, ताकि हर यात्री की सुरक्षित और उनकी सुखद यात्रा का अनुभव हासिल हो। जी
1: बहुत बहुत धन्यवाद तारिक साहब, पहलगाम से यात्रा की वर्तमान स्थिति और श्रद्धालुओं की आवाजाही और वहां की व्यवस्थाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने के लिए।
0: शुक्रिया।
1: जी श्रोताओं, और भी रिपोर्ट्स आप तक पहुंचानी, आगे इस कार्यक्रम को हम बढ़ाते रहेंगे।

0: श्री अमरनाथ जी, यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप समाप्त कर रहे हैं। हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। श्री अमरनाथ जी, यात्रा से संबंधित हर महत्वपूर्ण समाचार और ताज़ा जानकारी हम निरंतर आप तक पहुंचाते रहे हैं। आइए रुक करते हैं गांधरबल का। बालतल मार्ग से यात्रा की गतिविधियों, श्रद्धालुओं की आवाजाही तथा वहां की वर्तमान व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ इंतजाम है? रहीम रिजवान साहब इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रिजवान साहब, आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण में आपका भी हार्दिक स्वागत है। बताइए, गांधरबल से इस समय क्या ताजा जानकारी है?
1: बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक साहब, आपका भी। अगर हम बालतल मुख्य मार्ग की बात करेंगे तो आज यहाँ मौसम बिल्कुल सुहाना है और सुहाने मौसम के बीच यात्री जो है वो बालतल मार्ग से पवित्र गुफा की ओर रवाना हो रहे हैं। बालतल मुखी मार्ग से बीते दिनों की तरह आज 12वें रोज श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा सुचारू रूप से जारी है। श्रद्धालु बालतल क्षेत्र की सुंदरता देखकर झूम उठते हैं एवं वह दुमेल से रेल पथरी, काली मथा, ब्रारी मरग, संगम टाप, पंचतरणी, लवर केव जैसे कठिन मकामा तय करके पवित्र गुफा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। इस वातावरण में आज 11,201 श्रद्धालु पूरे उत्साह तथा भक्तिभाव के साथ बालतल बेस कैंप से गुफा की तरफ रवाना हुए। दुमेल कंट्रोल गेट से अपना पवित्र सफर शुरू करने वाले इन श्रद्धालु में 8,595 पुरुष, 2,168 महिलाएं, 160 बालक बालिका, 45 साधु, 40 साधियां, 4 ट्रांसजेंडर एवं 199 सुरक्षा कर्मी शामिल थे। जय बाबा बर्फानी का पवित्र नाद करते हुए जोशो जज्बे के साथ इन श्रद्धालुओं को कड़ी सुरक्षा के बीच पवित्र गुफा की ओर जाने की अनुमति दी गई। इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु आए रोज पवित्र गुफा जाकर माथा टेकते हैं, पूजा पाठ में शिरकत करके देश एवं घाटी के अमन शांति तथा विकास के लिए प्रार्थना करते हैं। इधर बीती रात 10 बजे तक 22,939 यात्री शिवलिंगम का दर्शन करके वापस बालतल बेस कैंप पहुंचे। बालतल बेस कैंप पहुंचने वाले इन श्रद्धालुओं में 16,221 पुरुष, 6,005 महिलाएं, 253 बालक बालिका, 170 साधु, 18 साधियां, 7 ट्रांसजेंडर एवं 265 सुरक्षा कर्मी शामिल थे। श्रोताओं, देर रात गए तक शिवलिंगम का दर्शन करके सुरक्षित बालतल बेस कैंप पहुंचने वाले श्रद्धालु ने जिला प्रशासन के द्वारा इस वर्ष किए गए व्यवस्थाओं पर इत्मीनान का इजहार करते हुए आकाशवाणी को बताया कि प्रशासन ने यात्रा रूट के हर पड़ाव पर यात्रियों की सहायता के लिए उच्च स्तर की सुविधाएं उपलब्ध रखी है, जिनमें भोजन, शौचालय, साफ पानी, बिजली, नहाने के लिए गर्म पानी, चिकित्सा व्यवस्थाओं के साथ साथ रात्रि विश्राम के लिए उम्दा बेडिंग तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध रखी हैं। बालतल बेस कैंप से पवित्र गुफा तक जगह जगह सेवादार सुबह 4 बजे से ही अपने लंगरों में यात्रियों को भोजन कराने में मशगूल नजर आ रहे हैं। इसी तरह सुरक्षा कर्मी भी तीर्थ यात्रियों की सहायता के लिए चाकू चौबंद नजर आ रहे हैं। इस तरह व्यवस्थाओं को लेकर यात्री बेहद संतुष्ट हैं तथा वे यहाँ का वातावरण देखकर झूम उठते हैं एवं यहाँ की सुंदरता देखकर उन्हें मन को शांति मिलती है। इधर श्रीनगर कारगिल राजमार्ग पर यात्री वाहनों को तरजीह बुनियादों पर आगे बढ़ने की अनुमति दी जाती है। कॉन्वॉय के दौरान किसी भी प्राइवेट या सरकारी वाहन को आगे पीछे या दाएं बाएं चलने की अनुमति नहीं दी जाती है। इस तरह आज भी बालतल मुखी मार्ग से तीर्थ यात्रा खुश असलूबी और धार्मिक रूप से जारी है। जी।

0: जी बहुत बहुत धन्यवाद रिजवान साहब गांधरबल से विस्तार पूर्वक जानकारी साझा करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद आपका भी।
0: श्रोताओं, आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण समाप्त कर रहे हैं और इस विशेष प्रसारण को आप आकाशवाणी के एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज, एफएम पहलगाम 100.7 मेगाहर्ट्ज, ओटीटी प्लेटफॉर्म वीव्स, न्यूज ऑन एआईआर ऐप के आराधना चैनल तथा डीटीएच के माध्यम से भी सुन रहे हैं।

0: आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण। श्रोताओं, अब समय हो चला है समाचारों का। कुछ ही क्षणों में हम दिल्ली स्थित आकाशवाणी के समाचार कक्ष से प्रसारित हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू भाषाओं के समाचार हम आप तक रिले करेंगे। रिले का जरा सा इंतजार।
1: 3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ DRM 800।
2: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
3: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहतनाज। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से चुनाव अभियान शुरू किया। वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए। पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना के बाद 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया। और भारत ने लॉर्ड्स में एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
5: शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत ने इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। अब तक भारत ने विश्व भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 3 लाख शांति रक्षकों की तैनाती की है। वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक 11 सक्रिय शांति मिशनों में से 10 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
4: डॉक्टर जयशंकर ने सदस्य देशों से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने की अपील की। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरश से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने पश्चिम एशिया, यूक्रेन और सूडान सहित वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की। उन्होंने भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच मजबूत सहयोग को भी स्वीकार किया। वियतनाम के फू कुओक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु की सरकार इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेगी। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्य वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू कुओक द्वीप में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ने वाली ट्रॉलर दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत पर शोक व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने मृतक मछुआरों के परिजन को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की अभी घोषणा की है। FB महाकाली नामक ट्रॉलर 2 जुलाई को पूर्व मेदिनीपुर के दीघा संकटपुर मत्स्य बंदरगाह से 15 मछुआरों को लेकर रवाना हुई थी। 5 जुलाई के बाद ट्रॉलर से संपर्क टूट गया था। ट्रॉलर के केबिन से 9 शव बरामद किया गया है, जबकि 6 मछुआरों अभी भी पता है उनके।

0: तलाश जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से संदीपन दास गुप्ता।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इस दौरान वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत को निशाना बनाया गया। इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमरीका के अनुसार ये कार्रवाई वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हमलों के जवाब में की गई। उधर ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार को निशाना बनाया। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान दोनों ने होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों के बारे में नई चिंता पैदा हो गई है। ओमान के पास होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से होर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमेरिका ने आज से होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा।
2: 4 दिवसीय इस आयोजन में वस्त्र, फैशन, सतत विकास, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व का प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम में निर्माता, निर्यातक, वैश्विक खरीदार, निवेशक, नीति निर्माता, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल, शिल्पकार, स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी प्रदाता एक मंच पर एकत्र होंगे। इस आयोजन में हजारों प्रदर्शक, 7,000 से अधिक खरीदार तथा 20 से अधिक देशों अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, पुर्तगाल, स्पेन, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया सहित अन्य देशों के प्रतिनिधि और प्रतिभागी शामिल होंगे। सरकार की मजबूत भागीदारी को दर्शाते हुए इस वर्ष 8 राज्य इस आयोजन के साझेदार हैं, जबकि 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रदर्शक के रूप में भाग ले रहे हैं। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में बुधवार से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सौश्रुतम आयोजित की जाएगी। इस संबंध में आज एक दिन की कार्यशाला होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सौश्रुतम का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव और दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इस संगोष्ठी का उद्देश्य आयुर्वेद और आधुनिक शैल्य चिकित्सा के बीच सहयोग बढ़ाना तथा शोध, नवाचार और शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। ये कार्यक्रम शल्य चिकित्सा के जनक आचार्य सुश्रुत की स्मृति में आयोजित किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी आज तेज

0: वर्षा हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, सिक्किम, कर्नाटक और उड़ीसा में तूफान की आशंका है। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। बिहार के कटिहार जिले के मूसापुर गांव से पुलिस ने पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क से जुड़े संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। कटिहार के उपमंडलीय पुलिस अधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि ये युवक राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त था।
1: जांच के क्रम में यह बात ज्ञात हुआ कि ये पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर के संपर्क में था एवं भारत में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। इस आरोप में इन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में आईबी, एटीएस एवं एसटीएफ की टीम का भी सहयोग प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में अनुसंधान एवं अन्य सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा की ओएमआर शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर ओएमआर शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। किसी उत्तर का मिलान न हो तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन करके अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान करके चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ओएमआर चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। वहीं इंग्लैंड के लिलिशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। भारत के इंग्लैंड दौरे का ये अंतिम मैच है। भारत ने पिछले मैच में इंग्लैंड को 2-0 से हराया था। इससे पहले अमेरिका ने शूटआउट में भारत को 3-2 से हराया था। उड़ीसा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन होंगे। स्नान पूर्णिमा के बाद पखवाड़े भर चलने वाले अंसार काल के बाद पवित्र त्रिमूर्ति का पहला सार्वजनिक दर्शन होगा। मान्यता है कि स्नान पूर्णिमा के बाद अपनी धार्मिक बीमारी से ठीक होने के बाद पवित्र त्रिमूर्ति देश भर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के समक्ष अपने नए युवा रूप में प्रकट होंगे। मंदिर प्रशासन, जिलाधिकारियों और पुलिस ने सुचारू और व्यवस्थित दर्शन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की है। नव यौवन दर्शन के साथ रथ यात्रा के पूर्व सभी अनुष्ठानों का समापन होगा और विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ होगा। रथ यात्रा गुरुवार को पवित्र त्रिमूर्ति की श्री गुंडिचा मंदिर तक की औपचारिक यात्रा के साथ मनाई जाएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज की समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद फरत। लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय महिला टीम के मैच जीतने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों में छाया हुआ है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, भारतीय बेटियों ने लॉर्ड्स में लहराया तिरंगा, विदेश में सबसे बड़ी जीत। वहीं जनसत्ता ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस को सुर्खी बनाया है। पत्र लिखता है, केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस, एसआईटी से स्थिति रिपोर्ट मांगी। अमेरिका ईरान जंग तेज, रूस भी कूदा, अमर उजाला की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रंप ने ईरान की फिर की नाकेबंदी, हॉर्मूज से गुजरने पर 20% टोल मांगा। जगन्नाथ यात्रा में पहली बार देवी सुभद्रा का रथ खींचेंगी महिलाएं, हिंदुस्तान ने बदलाव शीर्षक से ये खबर प्रकाशित की है। अब नहीं सजेगा दिल्ली पुस्तक मेला, 31 साल पुरानी परंपरा हुई खत्म, दैनिक जागरण ने ये खबर प्रमुखता से प्रकाशित की है। अमरीका अंतरिक्ष में दर्पण लगाएगा, रात में भी सूरज चमकेगा, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, जब चाहे जहां चाहे मिलेगी रोशनी, इस साल लॉन्च हो सकते हैं 2 सैटेलाइट। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर श्रमिकों की सुरक्षा पर एक लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, सफाई कर्मियों की सुरक्षा का सवाल। पत्र लिखता है, आज भी कई जगहों पर नाले या सेप्टिक टैंक की सफाई बिना सुरक्षा के श्रमिकों से कराई जाती है। हर साल बड़ी संख्या में ऐसे श्रमिकों की मौत हो जाती है, मगर पीड़ित परिवारों को न्याय कम ही

0: Hindustan Times. And with that, it's back to you, Abhishek.
1: Thank you, Nina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India officially launches its campaign for election as non-permanent member of UN Security Council for 2028-29 term. Mortal remains of 15 Indian tourists killed in Vietnam boat tragedy arrive in Mumbai. Bodies of 9 fishermen recovered after the trawler sinks off West Bengal coast. U.S. launches strikes on Iran for the third consecutive night. President Donald Trump reinstates blockade on Iranian shipping in Strait of Hormuz. IMD forecasts heavy rainfall in Bihar and Odisha today. And in cricket, India script history at Lord's in London with 270-run win over England in a one-off women's test. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। भारत ने 2028-29 की मुद्दत के लिए अक्वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल यूएनएससी के गैर मुस्तकिल रुकन के इंतखाब के लिए अपनी मुहिम का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज कर दिया है। वियतनाम में कश्ती हादसे में हलाक होने वाले 15 भारतीय सयाहों का जसद खाकी मुंबई पहुंच गया है। मगरबी बंगाल के साहिल के करीब एक माहीगीर कश्ती के डूबने के बाद 9 माहीगीरों की लाशें बरामद कर ली गई हैं। अमेरिका ने मुसलसल तीसरी रात ईरान पर हमले किए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाई हुरमुज में ईरानी बहरी जहाजों की नाकाबंदी दोबारा नाफिज करने का ऐलान किया। मौसमियात महकमे ने आज बिहार और उड़ीसा में शदीद बारिश की पेशगोई की है। और क्रिकेट में लॉर्ड्स के मैदान में पहली मर्तबा खेले जाने वाले खवातीन टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 270 रन से हराकर तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। अब खबरें तफसील से। भारत ने 2028-29 की मुद्दत के लिए अक्वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल यूएनएससी के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर इंतखाब के लिए अपनी मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया है। न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहिदा के सदर दफ्तर में भारत की उम्मीदवारी का आगाज करते हुए वजीर खारजा डॉक्टर एस जय शंकर ने कहा कि दुनिया बढ़ते हुए तनाज़ात और अदम इस्तेहकाम का सामना कर रही है, जिसकी वजह से अक्वामे मुत्तहिदा का रोल पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गया है। उन्होंने भारत के शांति विजन का भी ऐलान किया, जिसका मतलब है उसूलों, एतमाद और दयानतदारी के जरिए जामे तरक्की को यकीनी बनाना। उन्होंने कहा कि यह विजन आलमी अमन, सलामती और मसावी मुनसिफाना तरक्की के लिए भारत की रहनुमाई करेगा। भारत की खिदमात को उजागर करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत अक्वामे मुत्तहिदा के कयाम से अब तक तकरीबन 3 लाख अहलकारों को अक्वामे मुत्तहिदा के तकरीबन 50 कयाम अमन मिशन में भेज चुका है, जबकि इस वक्त 4,300 से ज्यादा भारतीय अहलकार 10 मुख्तलिफ कयाम अमन मिशन में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा मुजाकिरात और सिफारतकारी का हामी रहा है और उसने आलमी खित्ते जनूब के खदशात और मफादात को आलमी सतह पर मौसर आवाज़ फराहम करने की कोशिश की है। अक्वामे मुत्तहिदा के रुकन मुल्कों से हिमायत की अपील करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि सलामती कौंसिल में भारत की मौजूदगी इस अहम इदारे में फैसला साजी को मजीद तकवीत फराहम करेगी। भारत अगर मुंतखब हो जाता है तो वह 2028 से 2 साल तक सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन रहेगा। इससे कबल भारत 8 मरतबा सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन रह चुका है, जिनमें सबसे हालिया मुद्दत 2021-22 थी। वियतनाम के फूकोक जजीरे के नजदीक कश्ती हादसे में हलाक होने वाले 15 भारतीय सयाहों का जसद खाकी कल रात मुंबई पहुंच गया। मेलुकिन के जसद खाकी को होचिन मिन सिटी से वियतनाम एयरलाइंस की परवाज के जरिए भारत लाया गया। इस अमल को वियतनाम में मौजूद भारत के सिफारती मिशन ने वियतनाम के हुक्काम के साथ मिलकर मुकम्मल किया। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला की रियासती हुकूमतों से कहा गया है कि वो महलुकीन के अहले खाना के साथ राबते में रहें और जसद खाकी को उनके आबाई शहरों तक पहुंचाने के इंतजाम में ताउन फराहम करें। वियतनाम में भारतीय सिफारतखाने ने इमदादी कार्रवाई, लाशों की शिनाख्त और उन्हें वतन वापस भेजने के अमल में ताउन के लिए वियतनाम के हुक्काम का शुक्रिया अदा किया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब 32 भारतीय सयाहों और 4 मकामी अमले के अरकान को ले जाने वाली एक तेज रफ्तार कश्ती जुमे के रोज फूकोक जजीरे के

0: करीब उलट गई, जिसके नतीजे में 15 भारतीय सैयाह हलाक हो गए। इस हादसे में बच जाने वाले 16 अफराद भारत वापस आ चुके हैं, जबकि एक जख्मी सैयाह अब भी वियतनाम के एक अस्पताल में जेर इलाज है। मगरबी बंगाल के साहिल से दूर रवा माह के अवाइल में लापता होने वाली मछली पकड़ने वाली एक कश्ती के बारे में मालूम हुआ है कि वो खलीज बंगाल में उलट गई थी, जिसमें 9 माहीगीरों की मौत की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 6 दीगर अब भी लापता हैं। ये कश्ती 2 जुलाई को 15 माहीगीरों के साथ शंकरपुर बंदरगाह से रवाना हुई थी। इस कश्ती से आखिरी बार राबता 5 जुलाई को हुआ था, जिसके बाद इसका कुछ पता नहीं चल रहा था। इतवार के रोज कोस्ट गार्ड, भारतीय बहरिया और रियासती एजेंसियों की मुश्तरका तलाशी मुहिम के दौरान खलीज बंगाल में इस उल्टी हुई कश्ती का पता चला। कश्ती के कैबिन से 9 बोसीदा लाशें बरामद की गईं, जबकि 6 अफराद अब भी लापता हैं। इन लाशों को जनूबी 24 परगना जिले के सीतारामपुर लाया गया है और शिनाख्त के लिए कटापुकुर मुर्दा खाने में रखा गया है। लाशों की शिनाख्त के मकसद से DNA मिलाप के लिए अहल खाना के खून के नमूने भी लिए गए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है। उन्होंने सोगवार कुनबों से ताजियत का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की तमन्ना की है। वजीर आजम के कौमी रिलीफ फंड से हलाक होने वाले हर शख्स के लवाहिकीन के लिए 2 लाख रुपए और जख्मियों के लिए 50,000 रुपए की इमदाद देने का ऐलान किया है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: मछली पकड़ने वाली ये कश्ती FB माँ काली मशरकी मिदनीपुर के दीघा शंकरपुर माहीगीरी बंदरगाह से 2 जुलाई को 15 माहीगीरों को लेकर रवाना हुई थी। 5 जुलाई को इस कश्ती से राबता मुनकता हो गया था। भारतीय कोस्ट गार्ड, बहरिया और रियासती एजेंसियों की जानिब से कई दिनों तक मुश्तरका तलाशी मुहिम चलाई गई। बिलाखिर शनिचर की दोपहर को जनूबी 24 परगना के कापद्वीप साहिल के करीब इसका पता लगा लिया गया। इमदादी टीमों ने कश्ती के कैबिन से 9 फरसुदा लाशें बरामद कर ली हैं, जबकि 6 माहीगीर अब भी लापता बताए जा रहे हैं। आसपास के पानी में तलाशी की कार्रवाई ताहाल जारी है। मगरबी बंगाल के माहीगीरी के वजीर राजेश महतो ने सोगवार खानदानों को यकीन दिलाया है कि रियासती हुकूमत उन्हें हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। DNA की तस्दीक और कानूनी जब्ते मुकम्मल होने के बाद लाशें उनके मुतल्लिका लवाहिकीन के हवाले कर दी जाएंगी। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: भारत की सबसे बड़ी आलमी टेक्सटाइल नुमाइश भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रही है। इस तकरीब का इफ्तिताह टेक्सटाइल के मरकजी वजीर गिरिराज सिंह करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 5F विजन फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरन से मुतासिर भारत टैक्स 2026 का मकसद इस कारोबार, सरमायाकारी, खाम माल की फराहमी, इख्तराअत, पॉलिसी साजी की बातचीत और टेक्सटाइल वैल्यू चेन में स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के लिए एक आलमी मेयार का प्लेटफॉर्म बनाना है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ये 4 रोजा प्रोग्राम टेक्सटाइल, फैशन, पायदारी, टेक्नोलॉजी, इख्तराअत, सरमायाकारी और बैनुल-अक़वामी तिजारत में आलमी सतह पर भारत की बढ़ती हुई क़यादत को उजागर करेगा। इस नुमाइश में सनअतकार, बरामद कुनंदगान, आलमी खरीदार, सरमायाकार, पॉलिसी साज, बैनुल-अक़वामी वफूद, दस्तकार, स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी फराहम करने वाले इदारे एक जगह इकट्ठा होंगे। इस तकरीब में हजारों नुमाइश कुनंदगान, 7,000 से ज्यादा खरीदार और मंदुबीन और 20 से ज्यादा मुल्कों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे, जिनमें अमेरिका, बरतानिया, जापान, पुर्तगाल, स्पेन, न्यूजीलैंड और जनूबी कोरिया समेत कई ममालिक शामिल हैं। हुकूमत के तआवुन को नुमाया करते हुए इस साल 8 रियासतें इस तकरीब की शराकत दार हैं, जबकि 9 रियासतें और मरकज के जेर इंतजाम इलाके नुमाइश कुनिंदगान के तौर पर हिस्सा ले रहे हैं। नई दिल्ली से प्रिया मोंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। अमेरिका ने मुसलसल तीसरी रात ईरान पर हमले किए, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में मजीद इजाफा हो गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये हमले जारी रहेंगे ताकि ईरानी अफवाज को भारी नुकसान पहुंचाया जा सके और आबनाए हुरमुज में बेगुनाह शहरियों और तिजारती जहाजों पर हमले करने की उनकी सलाहियत को खत्म किया जा सके। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी कि वो पिकैक्स पहाड़ियों में वाकई नतांज के करीब जेर जमीन न्यूक्लियाई ठिकाने को तबाह कर देंगे, जहां

0: मगरबी इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान गैर ऐलानिया तौर पर यूरेनियम अफजूदगी का मरकज कायम कर रहा है। तफसील हमारी नामा निगार से।
1: अमरीकी सदर ने यह भी ऐलान किया कि अमरीका अबनाए हुरमुज में ईरानी बहरी जहाजों की नाकाबंदी दोबारा नाफिज करेगा और इस अहम आबी गुजरगाह से गुजरने वाले जहाजों पर 20% चार्ज आयद करेगा ताकि समंदरी सिक्योरिटी के अखराजात पूरे किए जा सके। सर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि यह नाकाबंदी सिर्फ ईरानी जहाजों और उन जहाजों पर लागू होगी जो ईरान के साथ तिजारत करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आबनाए हुरमुज खुली है और खुली रहेगी चाहे ईरान इससे मुत्तफिक हो या ना हो। उन्होंने कहा कि दिगर ममालिक के तजारती जहाज़ों को आज़ादाना आमदोरफ्त की इजाज़त बरकरार रहेगी। अमरीकी फ़ौज ने यह भी ऐलान किया कि वह आज रात से ईरानी बंदरगाहों की दोबारा नाकाबंदी शुरू करेगी। दूसरी जानब ईरान ने अमरीका के इकदाम को मुस्तरद कर दिया और कहा कि आबनाए हुरमुज पर उसका मुकम्मल इख्तियार बरकरार है। ईरान ने वाज़ेह किया किसी भी सूरत में अमरीका को आबनाए हुरमुज के बंदोबस्त में मुदाखलत करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। न्यूज़ डेस्क से खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: मुत्तहिदा अरब इमारात के दो टैंकरों पर आबनाए हुरमुज से गुजरने के दौरान ईरानी क्रूज मिसाइलों के हमले के बाद भारतीय हमले का एक रुकन हलाक और 6 दीगर जख्मी हो गए। यूएई की वजारत दिफा ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में यह इत्तला दी है। वजारत ने कहा कि इन टैंकरों मुंबासा और अल बाहिया को ओमान की आबी हदूद में आबनाए हुरमुज की जनूबी गुजरगाह में निशाना बनाया गया। हलाक होने वाला अमले का रुकन मुंबासा टैंकर में सवार था। जख्मी होने वाले 8 अफराद में से 4 शदीद तौर पर जख्मी हैं। जख्मियों में 6 भारतीय शहरी जबकि यूक्रेन के 2 शहरी हैं। यमन में ईरान की हिमायत याफ्ता हूसी बागियों ने दावा किया है कि उन्होंने कल सऊदी अरब के अबा बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे पर मिजाइलों और ड्रोन से हमले किए। हूसियों के मुताबिक यह हमला यमन के सना बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे पर होने वाले फजाई हमलों के जवाब में किया गया जिनके बारे में उनका दावा है कि वो हमले सऊदी अरब ने किए थे। इस हमले में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है ताहम ये कार्रवाई कशीदगी में एक नुमाया इजाफा समझी जा रही है क्योंकि कई बरस कबल सऊदी अरब क्यादत वाले इत्तेहाद की जानिब से हूसियों के जेरे कंट्रोल इलाकों पर हमलों के बाद इस नौयत की सूरत हाल दोबारा सामने आई है। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज बिहार और उड़ीसा में शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात महकमे के मुताबिक आज अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मगरबी बंगाल, सिक्किम, आसाम और मेघालय के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश का इम्कान है। खवातीन क्रिकेट में कल लॉर्ड्स के मैदान में पहली मरतबा खेले जाने वाले खवातीन क्रिकेट टेस्ट मैच में हरमनप्रीत कौर की क्यादत में भारतीय टीम ने मेजबान इंग्लैंड को 270 रन से हराकर तारीखी कामयाबी हासिल की। जीत के लिए 457 रन के निशाने का पीछा करते हुए इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन लंच से पहले अपनी दूसरी इनिंग्स में 186 रन बनाकर आउट हो गई। भारत ने चाय के वक्फे पर अपनी दूसरी इनिंग्स 7 विकेट पर 341 रन बनाकर डिक्लेयर कर दी थी। मर्दों की भारतीय क्रिकेट टीम आज 3 एक रोजा बैन अल-अक़वामी मैचों की सीरीज के पहले मैच में मेजबान इंग्लैंड का सामना करेगी। यह मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक सपहर 3:30 बजे शुरू होगा। भारत की 21 साल तक की उम्र की जूनियर खवातीन हॉकी टीम ने अपने बरतानिया दौरे के आखिरी मैच में आज इंग्लैंड में लेलशाल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में बेल्जियम का मुकाबला करेगी। इंग्लैंड के खिलाफ 0-2 की शानदार जीत के साथ वापसी के बाद भारतीय टीम इस दौरे का इख्तिताम जीत के साथ करने की कोशिश करेगी। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
2: शुक्रिया कौनन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाह होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शह सुर्खियाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार प्रताप की शह सुर्खी है, भारत और जापान ने आज़ाद, खुले और कवानीन पर मबनी भारत बैरुल्काहिल खित्ते के लिए अपनी अहदबस्तगी का इरादा किया। अखबार इनकलाब की शह सुर्खी है, गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 अहम तजुर्बात का मियाबी के साथ मुकम्मल। वन नेशन वन इलेक्शन पर सरगर्मी तेज, पार्लिमानी कमेटी लखनऊ पहुंची। दौरे का मकसद सियासी जमातों, सरकारी अफसरान और दीगर फरीकों से तजावीज हासिल करना है। यह खबर भी अखबारात में नुमाया है। अखबार प्रताप लिखता है कि वजीर आजम मोदी ने फिजिक्स ओलंपियाड जीतने वाले भारतीय तलबा को मुबारकबाद दी। अखबारात ने दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता के इस बयान को नुमाया किया है कि खवातीन की खुद मुख्तारी विकसित भारत का संग बुनियाद बन चुकी है।
0: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत ने 2028-29 की मुद्दत के लिए अक्वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल यूएनएससी के गैर मुस्तकिल रुकन के

0: इंतखाब के लिए अपनी मुहिम का बाजाब्त तौर पर आगाज कर दिया है। वियतनाम में कश्ती हादसे में हलाक होने वाले 15 भारतीय सयाहों का जसद खाकी मुंबई पहुंच गया है। मगरबी बंगाल के साहिल के करीब एक माहीगीर कश्ती के डूबने के बाद 9 माहीगीरों की लाशें बरामद कर ली गई हैं। अमेरिका ने मुसलसल तीसरी रात ईरान पर हमले किए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हुरमुज में ईरानी बहरी जहाजों की नाकाबंदी दोबारा नाफिज करने का ऐलान किया। मौसमियात महकमे ने आज बिहार और उड़ीसा में शदीद बारिश की पेशगोई की है। और क्रिकेट में लॉर्ड्स के मैदान में पहली मर्तबा खेले जाने वाले खवातीन टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 270 रन से हराकर तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
1: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप समाप्त कर रहे हैं। मैं हूं अशफाक और आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप इस विशेष प्रसारण को आकाशवाणी के FM बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, FM पहलगाम 100.7 मेगाहर्ट्ज़, OTT प्लेटफॉर्म व्यूज, न्यूज़ ऑन AIR के आराधना चैनल तथा DTH के माध्यम से भी सुन रहे हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा से संबंधित हर महत्वपूर्ण समाचार और ताज़ा जानकारी हम निरंतर आप तक पहुंचाते रहे हैं और आगे भी पल पल की हर अपडेट से आपको आगाह कराते रहेंगे। आइए नज़र डालते हैं ताज़ा जानकारी पर। ताज़ा जानकारी के अनुसार आज सुबह से जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से कुल 233 छोटे बड़े वाहनों में 5,335 श्रद्धालु कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुए हैं। इनमें 1,736 श्रद्धालु बालतल मार्ग से और 3,599 श्रद्धालु पहलगाम मार्ग से पवित्र गुफा की ओर जाएंगे। इन श्रद्धालुओं में 3,911 पुरुष, 1,288 महिलाएं, 21 बच्चे, 90 साधु, 24 साध्वियां और एक ट्रांसजेंडर श्रद्धालु शामिल हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी हर ताज़ा और ज़रूरी जानकारी हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के साथ।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण के साथ हम आपकी सेवा में आज सुबह से ही उपस्थित हैं। आप तक ताज़ा जानकारी पहुंचाते हैं। सुबह 8 बजे तक जो जानकारी हमारे पास पहुंची है उसके अनुसार आज सुबह 8 बजे तक कुल 3,282 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में शिव जी के दर्शन किए। इनमें 2,370 पुरुष, 775 महिलाएं, 47 बच्चे, 13 साधु, 2 साध्वियां और 75 सुरक्षा बलों के जवान शामिल हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी हर ताजा और महत्वपूर्ण जानकारी हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप समाप्त कर रहे हैं। आप इस विशेष प्रसारण को आकाशवाणी के एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, ओटीटी प्लेटफॉर्म व्यूज न्यूज ऑन एआईआर ऐप के आराधना चैनल तथा डीटीएच के माध्यम से सुन रहे हैं। आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के साथ आप बने रहें।

0: श्री अमरनाथ जी, यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप समाप्त कर रहे हैं। आप इस विशेष प्रसारण को आकाशवाणी के एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.7 मेगाहर्ट्ज़, ओटीटी प्लेटफॉर्म व्यूज न्यूज ऑन एआईआर ऐप के आराधना चैनल तथा डीटीएच के माध्यम से सुन रहे हैं। श्री अमरनाथ जी, यात्रा के विशेष प्रसारण में हम आपको ताजा जानकारी, महत्वपूर्ण समाचार निरंतर आप तक पहुंचाते रहते हैं। अभी रुक करते हैं श्रीनगर का, जहां पांथा चौक कैंप है। यात्रा के दौरान ये ट्रांजिट कैंप श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है, जहां उनके ठहरने और आगे की यात्रा से जुड़ी व्यवस्थाएं की जाती है। इस समय पांथा चौक ट्रांजिट कैंप से हमारे संवाददाता इमरान नायकू फोन लाइन पर मौजूद हैं। इमरान साहब, आकाशवाणी की इस विशेष प्रसारण में आपका हार्दिक स्वागत। बताइए, पांथा चौक ट्रांजिट कैंप से इस समय क्या ताजा जानकारी है?
1: बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने भी शुरू में ही कहा कि बड़ा इम्पोर्टेंट ट्रांजिट कैंप है ये श्रीनगर का पांथा चौक, जहां पर अमरनाथ जी यात्री हर साल जो है यहां पे ठहरते हैं और यहां अमरनाथ यात्रियों के जत्थे पहुंचते हैं। एज यूजुअल कल यहां दो अमरनाथ जी यात्रियों के जो काफिले हैं, जो जत्थे हैं, वो पहुंचे, जिन्होंने यहाँ नाइट स्टे किया, रात को वो ठहरे और उनके लिए सभी सुविधाएं सरकार की तरफ से पहले से ही रखी गई है। और आज सुबह उन्हें अमरनाथ जी यात्रा के पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना किया गया है। और इस काफले में अमरनाथ जी यात्री, जिनमें मेल, फीमेल और साथ साथ साधु साध्वी और कुछ बच्चे भी शामिल थे, जो मुल्क के अलग अलग हिस्सों या मुख्तलिफ जगहों से यहाँ कश्मीर पहुंचे हैं। और साथ ही ये जो अमरनाथ जी यात्री रात को यहाँ पे ठहरे हैं, इनके लिए जैसे कि हम पहले दिन से बता रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस पांथा चौक ट्रांजिट कैंप में अमरनाथ जी यात्रियों के लिए हर तरह की सुविधाएं रखी गई है। और न सिर्फ बेसिक जो फैसिलिटीज है, जिसमें लंगर है, कम्युनिटी किचन है, खाने पीने की बाकी चीजें हैं, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी है, जितनी भी बेसिक फैसिलिटीज है उनको गवर्नमेंट ने पहले ही इंश्योर किया है। दूसरा ये कि सिक्योरिटी के भी यात्रा से पहले ही यहाँ उसको भी सख्त कर दिया गया था, यानी पूरी इस ट्रांजिट कैंप को मॉनिटरिंग की जा रही है सीसीटीवी कैमराज के जरिए से। पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, ट्रैफिक पुलिस और जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस है, वो अपनी खिदमात 24/7 जो है अंजाम यहाँ पे दे रहे हैं, वो अपनी ड्यूटीज यहाँ पे दे रहे हैं और यात्रियों को की यहाँ पे वो है अपनी तरीके से जो है सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ साथ प्रशासन के जो मुख्तलिफ महकमे हैं, जो डिपार्टमेंट्स है, तो उनके लोग भी राउंड ऑफ क्लॉक यहाँ पे पहले दिन से ही अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और लोकल्स अपने तरीके से इस ट्रांजिट कैंप में अपनी खिदमात दे रहे हैं। और कुल मिला के जितने भी यात्री अभी तक इस ट्रांजिट कैंप में जिन्होंने विश्राम किया है या जो यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने यहाँ पे स्टे किया है, उनसे हमारी मुसलसल बात हो रही है और यहाँ इस ट्रांजिट कैंप को लेके सबका यही कहना है कि हर तरह की अच्छी फैसिलिटीज प्रशासन की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से रखी गई है। और खासकर जिस तरीके से जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से वो कश्मीर वैली पहुंचते हैं, तो इस दौरान जो सिक्योरिटी की तरफ से जो खिदमात यात्रियों के लिए पहुंचाई जा रही है, उस पर वो काफी खुश नजर आ रहे हैं और उसका वो इंडियन आर्मी और पुलिस और बाकी एजेंसियों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सो आज के दिन को लेके भी जैसे यात्रियों को अमरनाथ जी यात्रा के लिए रवाना किया गया है, वहीं आज मौसम भी साजगार है, हल्की बादल छाए हुए हैं, तहम ओवरऑल आज भी वेदर जो है श्रीनगर शहर में वो काफी खुशगवार है, सुहाना मौसम है। और इस सुहाने मौसम के बीच में जहां हल्के बादल, हल्की सी धूप और ठंडी हवाएं भी चल रही है, वहीं अमरनाथ यात्री यहां ट्रांजिट कैंप

0: हैं, और वहीं यहां से यात्रियों को अमरनाथ जी गुफा के पवित्र दर्शन के लिए रवाना किया गया है।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद इमरान साहब इस ज़रूरी जानकारी के लिए।
0: थैंक यू सो मच।
1: जी श्रोताओ, आप समाप्त कर रहे हैं यात्रा 2024 का स्पेशल ट्रांसमिशन। आप ये ट्रांसमिशन आकाशवाणी के FM बालतल 103.7 और FM पहलगाम 100.1 MHz और इसके साथ साथ न्यूज़ ऑन AIR के आराधना चैनल तथा DTH के माध्यम से भी समाप्त कर रहे हैं। बने रहिएगा हमारे साथ।

0: गायत्री मंत्र वैदिक संस्कृति की, हिंदू संस्कृति की एक महान धरोहर है। संस्कृत में इस मंत्र की परिभाषा कुछ यूं की गई है, गायंतम त्रायते इति गायत्री। गायंतम यानी जो भी कोई इसका उच्चारण करता है, त्रायते यह उसकी रक्षा करता है। वेदों द्वारा प्रदत्त इस महान मंत्र में अत्यधिक शक्ति है। इसकी महानता के दो मुख्य कारण हैं। पहला, इसके स्वरों में अद्भुत शक्तिशाली वाइब्रेशंस हैं, और दूसरा कारण है इसमें समाहित गूढ़ भाव। यह मंत्र एक प्रार्थना है आंतरिक ज्ञानोदय के लिए, जो मानव जीवन का अंतिम ध्येय है, जिसके बाद मांगने के लिए और कुछ नहीं बचता, जिसके बाद सारे मार्ग अपने आप आलोकित होते हैं, ईश्वर प्राप्ति के द्वार खुल जाते हैं। गायत्री मंत्र में तीन प्रकार के स्वर हैं, अनुदात, उदात एवं स्वरित। इन स्वरों में गायत्री मंत्र का यदि जाप किया जाए तो इसके अद्भुत कंपन में वो क्षमता है कि मानव जीवन में दुखों का निवारण कर दे। यदि ध्यान दें तो आप देखेंगे कि मनुष्य के अधिकांश दुखों का कारण है अज्ञान। यदि अज्ञान को ज्ञान के प्रकाश द्वारा आलोकित कर दिया जाए तो आप पाएंगे कि मनुष्य के बहुत से दुख दूर हो जाते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अज्ञाने न तो ज्ञानम आवृत्तम तेन मुह्यंत जंतवा। अज्ञानेन, अज्ञान के आवरण से हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि ढकी हुई है, और इस कारण मानव जाति दुखों के भंवर में फंसी तिलमिला रही है। गायत्री मंत्र इस अज्ञान के आवरण को निकाल फेंकने का एक अचूक रामबाण नुस्खा है। एक बार अज्ञान का यह पर्दा हटा, हम इस काबिल हुए कि सच्चाई को देख और समझ सकें, तो तुरंत उन सारे दुखों का अंत हो जाएगा जो अज्ञान के गर्भ से जन्म कर हमारे जीवन रूपी चंदन पर सर्पों की भांति लिपटे हुए हैं। ये सारे दुख वास्तविक भले ही हों पर नाजायज हैं, अवैध हैं। मित्रों, ध्यान से सुने इस गूढ़ सत्य को। हम ब्रह्मांड में रहते हैं और हमारे भीतर एक ब्रह्मांड बसा हुआ है। इस सत्य के दोनों ही पहलू समझने आवश्यक हैं। हम ब्रह्मांड में रहते हैं, सभी जानते हैं, हमारे भीतर एक ब्रह्मांड रचा बसा है, बहुत कम लोग जानते हैं। गायत्री मंत्र हमें शक्ति के, ज्ञान के स्रोतों से, ऊर्जा के स्रोतों से जोड़ता है, दोनों ओर, बाहरी ब्रह्मांड में भी तथा भीतरी ब्रह्मांड में भी। इन दोनों स्रोतों का निर्देश किया गया है गायत्री में सवितुः शब्द में। सवितुः का शाब्दिक अर्थ है संस्कृत में सूर्य, भास्कर, रवि, आदित्य, दिवाकर या प्रभाकर, जो भी नाम आप दे लें। गायत्री मंत्र एक प्रार्थना है अपने बाहरी रूप में भगवान भास्कर के प्रति, जो बाहरी ब्रह्मांड का प्रतीक है, और अपने आंतरिक स्वरूप में गायत्री मंत्र एक प्रार्थना है हमारे आंतरिक सूर्य के प्रति, और ये आंतरिक आदित्य है हमारी चेतना। गायत्री मंत्र हमें शक्ति के, ऊर्जा के इन दो महत्वपूर्ण स्रोतों से जोड़ता है, एक बाहरी सूर्य से, एक आंतरिक आदित्य से।
1: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप समाप्त कर रहे हैं। इस विशेष प्रसारण को आप एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.7 मेगाहर्ट्ज़, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स तथा डीटीएच के माध्यम से समाप्त कर रहे हैं। श्रोताओं, अब समय हो चला है उर्दू समाचारों को अगले क्रम में आकाशवाणी की प्राइमरी सर्विस से प्रसारित उर्दू समाचार रिले किए जाएंगे। रिले का जरा सा इंतजार।

0: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं एजाजा अख्तर। भारत ने 2028-29 के लिए अक्वामे मुतहदा सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल मेंबर के चुनाव के लिए बाज़ाबता तौर मुहिम का आगाज किया है। अक्वामे मुतहदा हेडक्वार्टर पर गुज़श्ते शाम भारत की उम्मीदवारी को लॉन्च करने के मौके पर वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत के शांति नजरिए को मुतारिफ किया, जिसका मकसद आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए ज़वाबित के तहत जामे तरक्की का हुसूल है। भारत इससे पहले 8 मरतबा अक्वामे मुतहदा सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल मेंबर रह चुका है। पहाड़ी ट्राइबल एम्प्लाइज वेलफेयर फोरम के एक वफद ने फोरम के सदर खालिद महमूद खान की सरबराही में लोक भवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। वफद ने मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे कबायली तबके से वाबस्ता मुलाजमीन को दरपेश मसाइल और दीगर फलाही मुतालबात LG की नोट्स मिलाए। उत्तराखंड के साबिक वजीर आला तीरथ सिंह रावत ने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मुलाकात करके कई मामलों पर उनके साथ तबादले ख्याल किया। दरियासा मेंबर असेंबली शोपियां शब्बीर अहमद कुल्ले की सरबराही में शोपियां का एक अवामी वफद LG से मुलाकी हुआ। वफद ने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की अमलावरी से मुतल कई उमूर LG की दानिस्त में लाए। अनंतनाग राजौरी पार्लियामानी हल्के के पार्लियामेंट मेंबर मियां अल्ताफ अहमद ने कल शोपियां में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग में जिले में अमलाई जा रही मुख्तलिफ मरकजी स्कीमों की अमलावरी का जायजा लिया। उन्होंने इन फलाही स्कीमों की मौसर अमलावरी को यकीनी बनाने की हिदायत देते हुए जेर अमल प्रोजेक्टों को बरवक्त मुकम्मल करने की हिदायत दी। मीटिंग में श्रीनगर पार्लियामानी हल्के के मेंबर पार्लियामेंट आगा सईद रूहल्ला महदी, जिले के मेंबरान असेंबली और जिला इंतजामिया के आला अफसरान मौजूद थे। श्री अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में कल शाम तक लगभग 3 लाख यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी देकर शिवलिंगम के दर्शन किए थे। आज भी हजारों की तादाद में यात्री पहलगाम और बालतल के रास्ते गुफा पर पहुंच रहे हैं। इस दौरान जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से आज 5,335 यात्रियों पर मुश्तमिल 13वां जत्था श्रीनगर के लिए रवाना हुआ। इनमें से 1,736 यात्री बालतल के रास्ते गुफा की तरफ जाएंगे, जबकि 3,599 यात्री पहलगाम का रास्ता इख्तियार करेंगे। इस दौरान आज सुबह 9 बजे तक मजीद 5,412 यात्रियों ने शिवलिंगम के दर्शन किए। सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा का दौरा करके वहां जेर इलाज श्री अमरनाथ जी यात्रियों की इयादत की। सूबाई कमिश्नर ने यात्रियों को हर मुमकिन सहूलत मुहैया रखने की हिदायत दी। इदारे के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई ने सूबाई कमिश्नर को जानकारी देते हुए कहा कि श्रद्धालुओं को इलाज मुआवजे की सहूलत फराहम करने के लिए एक मखसूस वार्ड कायम किया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट श्रीनगर में DOPT के कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन इम्पा और GAD के इश्तराक से जम्मू कश्मीर इंतजामिया के आला अफसरों के लिए कल शुरू हुआ 2 रोजा तरबियती प्रोग्राम आज भी जारी रहेगा। कर्मयोगी कर्तव्य कार्यक्रम के तहत मुनक़दा इस तरबियती प्रोग्राम का बुनियादी मकसद इंतजामिया से जुड़े अफसरों की सलाहियत साजी को यकीनी बनाना, नीज अवामी खिदमात में बेहतरी लाना है। इस तरबियती प्रोग्राम के बारे में इम्पा की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रुकैया अमीन ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर को बताया।
1: जो बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज जो है उनको इम्प्रूव किया जाए, जो हमारे कस्टमर्स आते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में उनके साथ कैसे पेश आया जाए, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि रूल्स और रेगुलेशंस को ही सिर्फ अपडेट करना ज़रूरी नहीं है, हमारे यहाँ बिहेवियर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे और ह्यूमनली पेश आ जाना कस्टमर के साथ जो बहुत ही मायने रखता है और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने आज ये प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है। कर्मयोगी के ये मेन कंपोनेंट है। इसमें हमारे आज के प्रोग्राम में तकरीबन 30 पार्टिसिपेंट्स हैं और इस प्रोग्राम को कामयाबी के साथ शुरू किया हुआ है।
0: तरबियत पाने वाली एक ऑफिसर रितिका कोल ने अपने तासुरात का इजहार करते हुए कहा,
2: ये प्रोग्राम जो है UT जितने भी अधिकारी है हमारे ऑफिशियल्स है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उनके रिगार्डिंग दी जाती है। ये एक व्यवहारिक संबंधित ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें हमें सिखाया जाता है कि हमारे सिटीजन जितने भी है प्राथमिकता देना जरूरी है हमें उनको, और इन सब से क्या होगा एक विकसित भारत के लक्ष्य को हम हासिल कर सकते हैं।
0: सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने तालीमी साल 2026-27 के लिए यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के दाखिले के लिए अहल उम्मीदवारों से ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब की हैं। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत 16.1 डिग्री, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जे हरारत 25.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज़।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप समाप्त कर रहे हैं। आप इस विशेष प्रसारण को आकाशवाणी के FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, OTT प्लेटफॉर्म वेव्स, न्यूज ऑन AIR ऐप के आराधना चैनल तथा DTH के माध्यम से भी सुन रहे हैं। आप तक पहुंचाते हैं ताज़ा जानकारी। सुबह 9 बजे की ताज़ा जानकारी के अनुसार आज सुबह 9 बजे तक कुल 5,412 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन किए। इनमें 3,920 पुरुष, 1,287 महिलाएं, 82 बच्चे, 23 साधु, 5 साध्वियां और 95 सुरक्षा बलों के जवान शामिल हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी हर ताज़ा और महत्वपूर्ण जानकारी हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के साथ।

श्री अमरनाथ जी, यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप समाप्त कर रहे हैं। हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आप इस विशेष प्रसारण को आकाशवाणी के FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, OTT प्लेटफॉर्म वीव्स, न्यूज़ ऑन AIR ऐप के आराधना चैनल तथा DTH के माध्यम से सुन रहे हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा से संबंधित हर महत्वपूर्ण समाचार और ताज़ा जानकारी हम निरंतर आप तक पहुंचाते रहे हैं और आगे भी पल पल की हर अपडेट से आपको आगाह कराते रहेंगे। यात्रा से जुड़ी जो भी नई और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे पास प्राप्त होगी उसे इसी प्रसारण के माध्यम से तत्काल आप तक पहुंचाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। अभी तक की ताज़ा जानकारी के अनुसार आज सुबह 9 बजे तक कुल 5,412 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। इनमें 3,920 पुरुष, 1,287 महिलाएं, 82 बच्चे, 23 साधु, 5 साध्वियां और 95 सुरक्षा बलों के जवान शामिल हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी हर ताज़ा और महत्वपूर्ण जानकारी हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के साथ।

लोगों ने पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। इनमें 3,920 पुरुष, 1,287 महिलाएं, 82 बच्चे, 23 साधु, 5 साध्वियां तथा 95 सुरक्षा बलों के जवान शामिल हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि श्री अमरनाथ जी यात्रा पर निकले सभी श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित, सुखद और मंगलमय रहे।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप समाप्त कर रहे हैं। आप इस विशेष प्रसारण को आकाशवाणी के FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, OTT प्लेटफॉर्म वीव्स न्यूज ऑन AIR के आराधना चैनल तथा DTH के माध्यम से सुन रहे हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा से संबंधित हर महत्वपूर्ण समाचार और ताज़ा जानकारी हम निरंतर आप तक पहुँचाते रहेंगे। ताज़ा जानकारी के अनुसार आज सुबह 9 बजे तक कुल 5,412 श्रद्धालु

0: यात्रा पे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ जरूरी सूचना। बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक का रास्ता ऊंचा नीचा है और चप्पल में स्लिप होने का खतरा रहता है, इसीलिए सफर ट्रेकिंग शूज पहनकर करें। दर्शन पर जाते हुए धीमी गति से चलें और किसी तरह का शॉर्टकट ना लें। वार्निंग नोटिस से मार्क की हुई किसी भी जगह पे ना रुके, क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। याद रखिए, बाबा बर्फानी के स्थल को हमें साफ रखना है, इसीलिए ऐसा कुछ ना करें जिससे वहां का वातावरण और सफर का पथ दूषित हो। प्लास्टिक के यूजेज पे सख्त मनाही है, ऐसा करने पे जुर्माना हो सकता है। यात्रा की सभी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करें। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड भोले बाबा के दर्शन पे जाते हुए आपको हर सुविधा उपलब्ध कराने में हमेशा तत्पर रहेगा, इसीलिए हमारी ये गुजारिश है कि आप अमरनाथ यात्रा पे आ रहे हैं तो अपनी फिटनेस पे भरपूर ध्यान दीजिए। इसके लिए रोज के 4 से 5 किलोमीटर वॉक करें, साथ ही डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे प्राणायाम और योगा करिए, ताकि सफर के दौरान आप फिजिकली फिट रहे। ध्यान रखिए कि सफर खाली पेट बिल्कुल ना करें। भोले का नाम ले और बिना जल्दबाजी किए सफर आराम से करिए, ताकि आपके शरीर को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। अमरनाथ यात्रा की किसी भी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करिए।
1: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप समाप्त कर रहे हैं और एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप इस विशेष प्रसारण को आकाशवाणी के FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, OTT प्लेटफॉर्म वीव्स, न्यूज़ ऑन AIR ऐप के आराधना चैनल तथा DTH के माध्यम से सुन रहे हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर और ताज़ा जानकारी हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज सुबह की यात्रा पर। आपको फिर से हम याद दिला दें कि ताज़ा जानकारी के अनुसार जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से कुल 233 छोटे बड़े वाहनों में 5,335 श्रद्धालु कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुए हैं। इनमें से 1,736 श्रद्धालु बालतल मार्ग से और 3,599 श्रद्धालु पहलगाम के प्राचीन मार्ग से पवित्र गुफा की ओर गए। वहीं नजर डालते हैं आज सुबह 9 बजे तक कुल 5,412 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। इनमें 3,920 पुरुष, 1,287 महिलाएं, 82 बच्चे, 23 साधु, 5 साध्वियां और 95 सुरक्षा बलों के जवान शामिल हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि श्री अमरनाथ जी यात्रा पर निकले सभी श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित, सुखद और मंगलमय रहे। फिलहाल इस पवित्र माहौल को और अधिक भक्तिमय बनाने के लिए आइए सुनते हैं एक मधुर भजन। बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के साथ।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं। चप्पल का उपयोग ना करें क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहनें। रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है।
0: अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है और ये कानून के तहत दंडनीय है। वेस्ट मटेरियल को नजदीक के कूड़ेदान में ही फेंकें। सभी प्रकार के जैविक कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। अमरनाथ यात्रा वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्ट पेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्री पेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा।
2: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप समाप्त कर रहे हैं। आप इस विशेष प्रसारण को आकाशवाणी के FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, OTT प्लेटफॉर्म वेव्स, न्यूज ऑन AIR ऐप के आराधना चैनल तथा DTH के माध्यम से सुन रहे हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर और ताज़ा जानकारी हम लगातार आप तक पहुँचाते रहे हैं। अभी तक जो 9 बजे तक हमारे पास ताज़ा जानकारी पहुंची है उसके अनुसार आज सुबह

9 बजे तक कुल 5,412 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। इनमें 3,920 पुरुष, 1,287 महिलाएं, 82 बच्चे, 23 साधु, 5 साध्वियां तथा 95 सुरक्षा बलों के जवान शामिल हैं। हम ये प्रार्थना करते हैं कि श्री अमरनाथ जी यात्रा पर निकले सभी श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित, सुखद और मंगलमय रहे। इस पवित्र माहौल को और अधिक भक्तिमय बनाने के लिए आइए सुनते हैं एक मधुर भजन।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
0: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है, सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट

0: या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
1: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्टपेड सिम ले जाने की

0: दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्रीपेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा।
1: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप समाप्त कर रहे हैं। इस विशेष प्रसारण के जरिए हम आप तक हर महत्वपूर्ण समाचार और ताज़ा जानकारी निरंतर पहुंचाते रहते हैं। आप इस विशेष प्रसारण को आकाशवाणी के एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, ओटीटी प्लेटफॉर्म वीव्स, न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप के आराधना चैनल तथा डीटीएच के माध्यम से सुन रहे हैं। अब थोड़ी बहुत ज़रा नज़र डालते हैं वापस आज सुबह की ताज़ा जानकारी जो हम तक पहुंची थी उसके अनुसार आज जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से कुल 233 छोटे बड़े वाहनों में 5,335 श्रद्धालु कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुए। इनमें से 1,736 श्रद्धालु बालतल मार्ग से और 3,599 श्रद्धालु पहलगाम के प्राचीन मार्ग से पवित्र गुफा की ओर गए। अब ज़रा 10 बजे तक की जो हम तक अपडेट पहुंची है उस पर भी नज़र डालते हैं, बात करते हैं दर्शन की ताज़ा स्थिति की। आज सुबह 10 बजे तक कुल 7,861 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। इनमें 5,635 पुरुष, 1,912 महिलाएं, 127 बच्चे, 38 साधु, 6 साध्वियाँ और 143 सुरक्षा बलों के जवान शामिल है। हम लगातार प्रार्थना करते रहेंगे कि श्री अमरनाथ जी यात्रा पर निकले सभी श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित, सुखद और मंगलमय रहे। आइए इस विशेष माहौल में एक और मधुर भजन सुनते हैं। बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के साथ।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं। चप्पल का उपयोग ना करें क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहनें। रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है।
0: अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है और ये कानून के तहत दंडनीय है। वेस्ट मटेरियल को नजदीक के कूड़ेदान में ही फेंकें। सभी प्रकार के जैविक कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालना चाहिए।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
0: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है, सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें।
2: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप समाप्त कर रहे हैं।

एक बार फिर आप सभी का इस विशेष प्रसारण में स्वागत है। श्री अमरनाथ जी यात्रा का ये प्रसारण आप आकाशवाणी की एफएम बालतल 103.7 MHz, एफएम पहलगाम 100.1 MHz, ओटीटी प्लेटफॉर्म वीव्स, न्यूज ऑन एयर ऐप की आराधना चैनल तथा डीटीएच के माध्यम से भी समाप्त कर रहे हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा से संबंधित हर महत्वपूर्ण समाचार, ताज़ा जानकारी हम निरंतर आप तक पहुंचाते रहते हैं। अभी तक की ताज़ा जानकारी के अनुसार आज सुबह 10 बजे तक कुल 7,861 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन किए। इनमें 5,635 पुरुष, 1,912 महिलाएं, 127 बच्चे, 38 साधु, 6 साध्वियाँ तथा 143 सुरक्षा बलों के जवान शामिल हैं। हम कामना करते हैं कि श्री अमरनाथ जी यात्रा पर निकले सभी श्रद्धालुओं को सक्षम दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो और वे स्वस्थ और सुरक्षित अपने घरों को लौटें। आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के साथ।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं। चप्पल का उपयोग ना करें क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहनें। रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है।
0: अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है और ये कानून के तहत दंडनीय है। वेस्ट मटेरियल को नजदीक के कूड़ेदान में ही फेंकें। सभी प्रकार के जैविक कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालना चाहिए।
2: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप समाप्त कर रहे हैं। आप इस विशेष प्रसारण को आकाशवाणी के FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, OTT प्लेटफॉर्म वीव्स, न्यूज ऑन AIR ऐप के आराधना चैनल तथा DTH के माध्यम से भी सुन रहे हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा से संबंधित हर महत्वपूर्ण समाचार और ताज़ा जानकारी हम निरंतर आप तक पहुँचाते रहे हैं और आगे भी पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। अभी तक की ताज़ा जानकारी के अनुसार आज सुबह 10 बजे तक कुल 7,861 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। इनमें 5,635 पुरुष, 1,912 महिलाएं, 127 बच्चे, 38 साधु, 6 साध्वियां तथा 143 सुरक्षा बलों के जवान भी शामिल हैं। हम यात्रियों से निवेदन करते हैं कि यात्रा पर जाने वाले सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि वह केवल वैलिड रजिस्ट्रेशन, RFID कार्ड और निर्धारित यात्रा परमिट के साथ ही यात्रा पर निकले। बिना रजिस्ट्रेशन के किसी भी श्रद्धालु को यात्रा मार्ग पर आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कृपया प्रशासन द्वारा जारी सभी निर्देशों का पालन करें और अपनी यात्रा को सुरक्षित और सुखद बनाएं। आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के साथ।

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा पे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ जरूरी सूचना। बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक का रास्ता ऊंचा नीचा है और चप्पल में स्लिप होने का खतरा रहता है, इसीलिए सफर ट्रेकिंग शूज पहनकर करें। दर्शन पर जाते हुए धीमी गति से चलें और किसी तरह का शॉर्टकट ना लें। वार्निंग नोटिस से मार्क की हुई किसी भी जगह पे ना रुके, क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। याद रखिए, बाबा बर्फानी के स्थल को हमें साफ रखना है, इसीलिए ऐसा कुछ ना करें जिससे वहां का वातावरण और सफर का पथ दूषित हो। प्लास्टिक के यूजेज पे सख्त मनाही है और ऐसा करने पे जुर्माना हो सकता है। यात्रा की सभी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करें। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड भोले बाबा के दर्शन पे जाते हुए आपको हर सुविधा उपलब्ध कराने में हमेशा तत्पर रहेगा, इसीलिए हमारी ये गुजारिश है कि आप अमरनाथ यात्रा पे आ रहे हैं तो अपनी फिटनेस पे भरपूर ध्यान दीजिए। इसके लिए रोज के 4 से 5 किलोमीटर वॉक करें, साथ ही डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे प्राणायाम और योगा करिए ताकि सफर के दौरान आप फिजिकली फिट रहें। ध्यान रखिए कि सफर खाली पेट बिल्कुल ना करें, भोले का नाम लें और बिना जल्दबाजी किए सफर आराम से करिए ताकि आपके शरीर को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। अमरनाथ यात्रा की किसी भी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करिए।
1: श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण आप समाप्त कर रहे हैं और अभी हमारे पास ताज़ा जानकारी पहुंची है। ताज़ा जानकारी के अनुसार सुबह 11 बजे तक, यानी आज के सुबह 11 बजे तक कुल 10,401 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। इनमें 7,420 पुरुष, 2,557 महिलाएं, 182 बच्चे, 56 साधु, 11 साध्वियां तथा 175 सुरक्षा बलों के जवान शामिल हैं। आप बने रहिए हमारे साथ।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्ट पेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्री पेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान

0: जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
1: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम एक महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।
2: श्री अमरनाथ जी, यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप समाप्त कर रहे हैं। आप इस विशेष प्रसारण को आकाशवाणी के FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, OTT प्लेटफॉर्म वेव्स, न्यूज़ ऑन AIR ऐप के आराधना चैनल तथा DTH के माध्यम से भी सुन रहे हैं। एक बार फिर हम आप तक ताज़ा जानकारी लेकर हाजिर हैं। ताज़ा जानकारी के अनुसार आज सुबह 11 बजे तक कुल 10,401 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। इनमें 7,420 पुरुष हैं, 2,557 महिलाएं, 182 बच्चे, 56 साधु, 11 साध्वियां तथा 175 सुरक्षा बलों के जवान भी शामिल हैं। आइए इस शुभ अवसर पर हम सब मिलकर ये कामना करें कि श्री अमरनाथ जी यात्रा पर निकले सभी श्रद्धालुओं को सकल दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो। हम प्रार्थना करते हैं कि सभी यात्री सुरक्षित, सुखद और मंगलमय रहे। श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी हर ताज़ा और महत्वपूर्ण जानकारी हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
0: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें।

श्री अमरनाथ जी, यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप समाप्त कर रहे हैं। आप इस विशेष प्रसारण को आकाशवाणी के FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, OTT प्लेटफॉर्म वेव्स तथा न्यूज़ ऑन एयर के आराधना चैनल और DTH के माध्यम से समाप्त कर रहे हैं। हम आप तक क्षण क्षण की सूचना पहुंचाते रहते हैं। श्रोताओं, अब समय हो चला है समाचारों का। अगले क्रम में हम आकाशवाणी की प्राइमरी सर्व से आप तक समाचार बुलेटिन रिले करेंगे। रिले का जरा सा इंतजार।

0: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित कर रहा है। इस कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। अमेरिका की सेना के सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसने अबू मूसा, बंदर अब्बास, बुशहर, चाहबार, जास्क और कोनारक के आसपास के इलाकों में हमला कर ईरानी तटीय रक्षा प्रणालियों, मिसाइल और ड्रोन ठिकानों तथा उनकी नौसैनिक क्षमताओं को निशाना बनाया है। ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और जलरमरु मध्य से गुजर रहे संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े दो टैंकरों को निशाना बनाया। इसमें एक नाविक की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि टैंकरों पर हुए इस हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हुई है और 6 भारतीय तथा 2 यूक्रेनी नागरिक घायल हुए हैं। इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका होर्मुस जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये नाकेबंदी केवल ईरानी जहाजों और ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर लागू होगी। दूसरी ओर ईरान ने होर्मुस जलडमरू मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमेरिका के दावे को खारिज कर दिया है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के एक म्यूजिक बार में लगी भीषण आग में मरने वालों की संख्या 30 हो गई है। अधिकारियों के अनुसार 70 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें 24 की हालत गंभीर है। पुलिस आग लगने के कारणों और बार में सुरक्षा नियमों की जांच कर रही है। घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स 356 अंक गिरकर 77,272 पर और निफ्टी 87 अंक घटकर 24,125 पर कारोबार कर रहा था। इंग्लैंड के लिलेशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। भारत के इंग्लैंड दौरे का ये अंतिम मैच है। भारत ने पिछले मैच में इंग्लैंड को 2-0 से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. India's largest global textile event, Bharat Tex 2026, began at Bharat Mandapam in New Delhi today. Union Textiles Minister Giriraj Singh inaugurated the four-day event. The event is showcasing India's growing global leadership in textiles, fashion, sustainability, technology, innovation, investment and international trade. It has brought together manufacturers, exporters, global buyers, investors, policymakers, international delegations, artisans, startups and technology providers. Inspired by Prime Minister Narendra Modi's 5F vision, farm to fiber to factory to fashion to foreign, Bharat Tex 2026 has evolved into a premier global platform for business, investment, innovation, policy dialogue and strategic partnerships across the textile value chain. The third edition of Bharat Tex 2026 is witnessing participation of around 7,000 buyers and over 20,000 textile products. International exhibitors from 14 countries are participating in the event. The Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, between India and the United Kingdom will come into force from tomorrow. The landmark deal grants Indian exports zero-duty access to 99% of tariff lines in the UK market. It reflects the shared commitment of India and the United Kingdom to deepen their strategic partnership and deliver prosperity for their people. The groundwork for this historic agreement was laid in May 2021 through the Enhanced Trade Partnership and the adoption of the India-UK Roadmap 2030, which set the goal of doubling trade to $100 billion by 2030. India has officially launched its campaign for election as a non-permanent member of the United Nations Security Council, UNSC, for the 2028-29 term. Launching India's candidature at the UN headquarters in New York, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said the world is facing growing conflict and instability, making the role of the United Nations more critical than ever.
2: As a candidate, it is natural that member states would like to understand what India brings to the table. One part of that is our vision of the priorities that the world

0: and the United Nations must address. The other is a track record which enables the international community to make its own judgment. Let me address the priorities first. As we contemplate the global order, India's focus will be on working for a secure, peaceful and equitable world.
1: India participated in the second ministerial meeting of the Palestine Donor Group, PDG, in Brussels yesterday. Addressing the meeting, Secretary in the Ministry of External Affairs, Sri Priya Ranganathan, emphasized that India has been a long-standing partner of the Palestinian people. She underlined India's ongoing developmental assistance, including capacity-building programs and humanitarian assistance to the people of Palestine. Ms. Ranganathan noted that India's projects are demand-driven and largely centered on healthcare, education, capacity building and vocational training. The death toll from a huge fire in a Bangkok music bar has increased to 30. Bangkok city officials today said more than 70 people remain hospitalized, with 24 of them in critical condition. Police said an investigation into the cause of the fire and whether the bar was following safety regulations is ongoing. It added that most of the people who were killed were found trapped in windowless bathrooms where they may have sought to escape the flames. The United States launched strikes on Iran for the third consecutive night, marking a new escalation in the resumption of hostilities. The U.S. military's Central Command said it struck areas around Abu Musa, Bandar Abbas, Bushehr, Chabahar, Jask and Konarak, targeting Iranian coastal defense systems, missile and drone sites, and maritime capabilities. Iran acknowledged the strikes but did not report any casualties or damage. In FIFA World Cup, France will take on Spain in the first semi-final at Dallas Stadium in Texas, US, tonight. The match is scheduled to begin at 12:30 a.m. Indian Standard Time. The Indian men's cricket team will take on hosts England in the first one-day international of the three-match series at Edgbaston in Birmingham today. The match will begin at 3:30 p.m. Indian Standard Time. And that is the end of this news bulletin.
2: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का आप विशेष प्रसारण समाप्त कर रहे हैं। आप इस विशेष प्रसारण को आकाशवाणी के एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, ओटीटी प्लेटफॉर्म वीव्स, न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप के आराधना चैनल तथा डीटीएच के माध्यम से भी सुन रहे हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा से संबंधित हर महत्वपूर्ण समाचार और ताज़ा जानकारी हम निरंतर आप तक पहुँचाते रहे हैं और आगे भी पल पल की हर अपडेट से आपको आगाह करते रहेंगे। श्रोताओं, आपको फिर से बताते चलें कि सुबह जो जानकारी हमारे पास थी उसके अनुसार जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हुए यात्री कुल 233 छोटे बड़े वाहनों में कश्मीर घाटी की ओर रवाना हुए, जिसमें कुल तैदा थी 5,335 श्रद्धालुओं की। इनमें से 1,736 श्रद्धालु बालतल मार्ग से और 3,599 श्रद्धालु पहलगाम मार्ग से पवित्र गुफा की ओर रवाना हुए। श्रोताओं, दर्शन की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। अभी तक जो हमारे पास अपडेट थी उसके अनुसार आज सुबह 11 बजे तक कुल 10,401 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। इनमें 7,420 पुरुष, 2,557 महिलाएं, 122 बच्चे, 56 साधु, 11 साध्वियां तथा 175 सुरक्षा बलों के जवान भी शामिल हैं। हम ये कामना करते हैं कि श्री अमरनाथ जी यात्रा पर निकले सभी श्रद्धालुओं को सकल दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो। आप बने रहिए हमारे साथ, आकाशवाणी का विशेष प्रसारण आप समाप्त कर रहे हैं।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्ट पेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्री पेड सिम जम्मू कश्मीर में काम

श्री अमरनाथ जी, यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप समाप्त कर रहे हैं। आप इस विशेष प्रसारण को आकाशवाणी के एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज, ओटीटी प्लेटफॉर्म वीव्स, न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप के आराधना चैनल तथा डीटीएच के माध्यम से सुन रहे हैं। श्री अमरनाथ जी, यात्रा से संबंधित हर महत्वपूर्ण समाचार और ताज़ा जानकारी हम निरंतर आप तक पहुँचाते रहें। श्रोताओं, इसी के साथ मेरा इस प्रसारण का समय यही समाप्त होता है। मुझे अनुमति दीजिए, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, आप इस पूरे समय हमारे साथ बने रहें। अब इस विशेष प्रसारण की जिम्मेदारी संभालेंगी मेरी सहयोगी उद्घोषक शाहिना ऋषि साहिबा, जो आगे भी श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी हर ताज़ा और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचाती रहेंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप उनका भी इसी अपनेपन के साथ स्वागत करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और एक मधुर भजन सुनते हैं।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्ट पेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्री पेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा।
2: आदाब, नमस्कार। आकाशवाणी श्रीनगर के विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 से हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। अभी से लेकर शाम 6 बजे तक हम आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे। मैं हूँ आपकी उद्घोषित साथी शाहिना ऋषि और आज इस प्रसारण में मेरे साथ रहेगी पजमान, और हम दोनों आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे और आप तक जो है महत्वपूर्ण अपडेट हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ। और पजमान
3: जी, हाँ श्रोताओं, आप इस विशेष प्रसारण को समाप्त कर रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz पर, FM पहलगाम 100.1 MHz पर, DTH की आराधना सर्विस, न्यूज़ ऑन एयर की मोबाइल ऐप और प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी हम आपकी सेवा में उपस्थित

0: उपस्थित रहते हैं। इस विशेष प्रसारण से हम यात्रा पर आए सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करते हैं और आपकी सुखद यात्रा की प्रार्थना करते हैं।
1: जी हाँ श्रोताओं, आपसे ये कहना चाहेंगे कि हमारे पास अपडेट आया है, 12 बजे का अपडेट हमारे पास आया है, दर्शन अपडेट। तो पजमान आपके साथ शेयर करेगी 12 बजे का अपडेट। जी पजमान।
0: श्रोताओं, आपको बताते चले कि आज दोपहर 12 बजे तक 12,907 तीर्थ यात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए।
1: जी हाँ, पुरुषों की संख्या, अगर हम बात करें संख्या की, तो पुरुषों की संख्या रही है 9,165, महिलाएं 3,203, बालक 239, साधु 71, साध्वी 14 और सुरक्षा कर्मचारी 215। तो इस तरह कुल मिलाकर संख्या रही है अभी 12 बजे तक 12,907 तीर्थ यात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए हैं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपकी सेवा में यहीं पर हैं।

आप समाप्त कर रहे हैं विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा। क्षण क्षण के अपडेट्स के लिए हम आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। श्रोताओं, कुछ ही क्षणों में हम आपको आकाशवाणी दिल्ली लिए चलेंगे, जहां से आप समाचार समाप्त करेंगे।

0: भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है।
1: दुनिया के 130 देशों से ऊपर बायर आए। अभी मोदी जी ने 56 देशों से FTA हो रहा, कुछ से हो गया है, कुछ से बाकी। ये बताता है कि आज 60,000 से ऊपर एग्जीबिटर आए। और सबसे बड़ी खासियत है इस एक्सपो में 90% MSME आए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार जो बायर आ रहे हैं ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे।
0: उद्घाटन समारोह में वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा और विभिन्न राज्यों के वस्त्र मंत्रियों ने भी भाग लिया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के निधन पर भारत सरकार और जनता की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आज दोहा के लिए रवाना हुए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमीर ने आधुनिक कतर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे भारत के घनिष्ठ मित्र थे। मंत्रालय ने कहा कि भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में उनके अमूल्य योगदान के लिए अमीर को हमेशा याद किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया विभाग के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के दोषियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली के एक अदालत द्वारा आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य लोगों को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी ठहराए जाने के फैसले का स्वागत किया। श्री भाटिया ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर वोट बैंक की राजनीति के लिए हुसैन का बचाव करने का आरोप लगाया। वियतनाम में नाव दुर्घटना में जान गंवाने वाले आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने कहा है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। वियतनाम के फोकवोक द्वीप के पास हुई स्पीडबोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले

0: किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। अमेरिका की सेना के सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसने अबू मूसा, बंदर अब्बास, बुशहर, चाहबार, जास्क और कुनारक के आसपास के इलाकों में हमला कर ईरानी तटीय रक्षा प्रणालियों, मिसाइल और ड्रोन ठिकानों तथा उनकी नौसैनिक क्षमताओं को निशाना बनाया है। ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और जर्डन भूमध्य से गुजर रहे संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े दो टैंकरों को निशाना बनाया। इसमें एक नाविक की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि टैंकरों पर हुए इस हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हुई है और 6 भारतीय तथा 2 यूक्रेनी नागरिक घायल हुए हैं। इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका होर्मुस जलडमरु मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। फीफा विश्व कप में आज रात टेक्सास के डलास स्टेडियम में पहला सेमीफाइनल फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। इंग्लैंड के लिलेशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The Comprehensive Economic and Trade Agreement between India and the United Kingdom will come into force from tomorrow. The landmark deal grants Indian exports zero duty access to 99% of tariff lines in the UK market. It reflects the shared commitment of India and the United Kingdom to deepen their strategic partnership and deliver prosperity for their people. The groundwork for this historic agreement was laid in May 2021 through the Enhanced Trade Partnership and the adoption of the India-UK Roadmap 2030, which set the goal of doubling trade to $100 billion by 2030. India's largest global textile event, Bharat Tex 2026, began at Bharat Mandapam in New Delhi today. Union Textiles Minister Giriraj Singh today inaugurated the event. Speaking to media, Mr. Singh said Bharat Tex is the vision of the Prime Minister Narendra Modi. He said it is now an international event and every year there has been an increase of exhibitors, buyers, sellers and visitors. He said this year over 60,000 buyers and exhibitors from 130 countries are participating in the event. The minister said MSMEs and entrepreneurs are also attending the Bharat Tex. He said free trade agreements with different countries are also benefiting the textile sector.
2: दुनिया के 130 देशों से ऊपर बायर आए हैं।
3: बायर्स फ्रॉम अराउंड 130 कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग इन द इवेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इंडिया नाउ हैज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स विद 56 कंट्रीज। वी आर कम्पीटिंग इन ग्लोबल मार्केट्स विद अ लार्ज नंबर ऑफ एग्जीबिटर्स टेकिंग पार्ट। वी आर डिलाइटेड दैट नियरली 90% ऑफ द पार्टिसिपेंट्स आर MSMEs। वी होप दिस ईयर्स एक्सपो विल विटनेस अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग टर्नआउट ऑफ बायर्स।
2: इस बार जो बायर आ रहे हैं ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे।
1: India has officially launched its campaign for election as a non-permanent member of the United Nations Security Council for the 2028-29 term. Launching India's candidature at the UN headquarters in New York, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said, "The world is facing growing conflict and instability, making the role of the United Nations more critical than ever."
4: As a candidate, it is natural that member states would like to understand what India brings to the table. One part of that is our vision of the priorities that the world and the United Nations must address. The other is a track record which enables the international community to make its own judgment. Let me address the priorities first. As we contemplate the global order, India's focus will be on working for a secure, peaceful and equitable world.
1: India participated in the second ministerial meeting of the Palestine donor group in Brussels yesterday. Addressing the meeting, Secretary in the Ministry of External Affairs, Siripriya Ranganathan, emphasized that India has been a long-standing partner of the Palestinian people. She underlined India's ongoing developmental assistance, including capacity-building programs and humanitarian assistance to the people of Palestine. Ms. Ranganathan noted that India's projects are demand-driven and largely centered

0: on healthcare, education, capacity building, and vocational training. The United States launched strikes on Iran for the third consecutive night, marking a new escalation in the resumption of hostilities. The U.S. military's Central Command said it struck areas around Abu Musa, Bandar Abbas, Bushehr, Chabahar, Jask, and Konarak, targeting Iranian coastal defense systems, missile and drone sites, and maritime capabilities. Iran acknowledged the strikes but did not report any casualties or damage. Iran responded with attacks targeting Bahrain, Jordan, and two tankers associated with the United Arab Emirates traveling through the strait, killing one mariner and injuring eight others. In men's cricket, the Indian team will take on hosts England in the first one-day international of a three-match series in Birmingham at 3:30 p.m. today. In FIFA World Cup, France will take on Spain in the first semi-final at Dallas Stadium in Texas, U.S. tonight. France reached the semi-finals after defeating Morocco 2-0 in the quarter-finals, while Spain advanced with a hard-fought 2-1 victory over Belgium. Domestic equity benchmark indices traded lower today, tracking weak global markets after a sharp rebound in crude oil prices to $85 per barrel mark amid escalating tensions in West Asia. And with that, we end this news bulletin.
1: पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
2: यात्रा मार्ग में बार-बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी-कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
1: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम एक महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।
3: आप समाप्त कर रहे हैं विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 FM बालतल और FM पहलगाम के संग।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं FM बालतल और FM पहलगाम के संग। श्रोताओं, आपको बता दें, जम्मू और कश्मीर पुलिस अमरनाथ यात्रा के यात्रियों की सुरक्षा और सेवा कर रही है। जम्मू और कश्मीर पुलिस अमरनाथ यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा का पूरा ध्यान रख रही है। पूरी यात्रा के रास्ते पर पुलिस और अमर बंधु टीम नीली जैकेट वाले सेवक 24 घंटे तैनात हैं। ये टीम रास्ते में किसी भी परेशानी का सामना करने वाले यात्रियों की मदद करती है, जैसे बच्चों की देखभाल, बुजुर्ग और दिव्यांग यात्रियों के लिए व्हीलचेयर और पीने का पानी जैसे ज़रूरी सुविधाएं दी जा रही है।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल और एफएल पहलगाम के संग। श्रोताओं, आपको बताते चले कि आज दोपहर 1 बजे तक 15,472 तीर्थ यात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए, जिसमें पुरुषों की संख्या 1,900, महिला 3,958, बालक 287, साधु 78, साध्वी 14, सुरक्षा कर्मचारी 235, ऐसे ही कुल मिलाकर 15,472 तीर्थ यात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं। चप्पल का उपयोग ना करें क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहनें। रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है।
0: अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है और ये कानून के तहत दंडनीय है। वेस्ट मटेरियल को नजदीक के कूड़ेदान में ही फेंकें। सभी प्रकार के जैविक कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालना चाहिए।

0: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं। आकाशवाणी आकाशवाणी 2026 आप समाप्त कर रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आपको हम आकाशवाणी दिल्ली लिए चलेंगे, जहां से आप समाचार समाप्त करेंगे उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी में।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं माजिद अली। भारत ने आबनाए उर्मुज में हालिया हमले में भारतीय जहाजियों के मारे जाने के बाद ईरान के सफारतकार को तलब किया है। भारत ने अक्वामे मुत्तहदा रुकनियत के लिए फलस्तीन की कोशिश की हिमायत की है। उसने फलस्तीन और इसराइल के दरमियान जारी तनाजे के दो रियासती हल की एक बार फिर तायद की है। भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इक्तसादी और तजारती समझौते पर कल से अमल दरामद शुरू हो जाएगा। कपड़े की सनत से मुतालिक भारत की सबसे बड़ी आलमी नुमाइश भारत टेक्स 2026 नई दिल्ली में शुरू हो गई है, जिसका मकसद कपड़े के शोबे में भारत की उभरती हुई क्यादत को नुमाया करना है। भारत के महकमा मौसमियात ने बिहार और उड़ीसा में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। टेक्सास में फीफा आलमी कप में आज रात पहले सेमीफाइनल में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा और क्रिकेट में बर्मिंगम में पहले ओडीआई में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। भारत ने आबनाए उर्मुज में मुत्तहदा अरब अमारात के परचम बरदार दो तेल टैंकरों पर एक ईरानी मिजाइल हमले के बाद आज ईरानी मिशन के नायब सरबराह मोहम्मद जावेद हुसैनी को तलब किया है। इस हमले में एक भारतीय शहरी हलाक और कई अफराद जख्मी हुए हैं। जनाब हुसैनी को अफसरान से मुलाकात के बाद नई दिल्ली में वजारत खारजा के सदर दफ्तर से रुख्सत होते हुए देखा गया। यह सिफारती कदम मुत्तहदा अरब अमारात की वजारत दिफा की तरफ से इस दावे की तस्दीक किए जाने के बाद उठाया गया था कि टैंकरों मुंबासा और बाहिया पर किए गए हमलों में एक भारतीय शहरी के हलाक और हमले के 8 अरकान के जख्मी होने का दावा किया गया है। इनमें 6 भारतीय और 2 यूक्रेनी बाशिंदे शामिल हैं। 4 जख्मियों की हालत तश्वीशनाक बताई जाती है। भारत ने अक्वामे मुत्तहदा में फलस्तीन की मेंबरशिप और 2 रियासती हल की हिमायत की है। कल ब्रुसेल्स में फलस्तीन अतियाकारों के ग्रुप की दूसरी वजारती मीटिंग से खिताब करते हुए वजारत खारजा में सेक्रेटरी श्री प्रिया रंगनाथन ने ये बात कही। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत फलस्तीनी अवाम का तवील अरसे से शराकत दार रहा है। उन्होंने फलस्तीन के अवाम की इंसानी इमदाद और सलाहियत साजी के प्रोग्रामों समेत भारत की तरक्याती इमदाद को उजागर किया। मोहतरमा रंगनाथन ने कहा कि भारत के प्रोजेक्ट मांग पर मबनी है और सेहत, तालीम, सलाहियत साजी और रिवायती तरबियत से मुतालिक हैं। भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इक्तिसादी और तिजारती मुआहदे CETA पर कल से अमल दरामद शुरू हो जाएगा। इस अहम मुआहदे के तहत भारतीय बरामदात पर बरतानिया की मार्केट में 99% अशिया पर कोई टैक्स नहीं होगा। इससे भारत और बरतानिया के दरमियान दिफाई शराकतदारी में गहराई और अवाम के लिए खुशहाली लाने के दोनों मुल्कों के मुश्तरका अज़्म का इजहार होता है। इस तारीखी मुआहदे के लिए मई 2021 में तौसी शुदा तिजारती शराकतदारी और 2030 के भारत बरतानिया खाके की मंजूरी के साथ शुरू किया गया था, जिसमें तिजारत को 2030 तक दुगना करके 100 अरब अमरीकी डॉलर की सतह तक ले जाने का निशाना तय किया गया है। तफसील हमारे नामा निगार।

से। भारत बरतानिया तजारती माहदे पर अमल दरामद आलमी सतह पर एक दयानतदार मुस्तहकम और मुसाबकती मईशत बनने के भारत के सफर की जानिब एक बड़ा कदम है। यह माहदा आवाम पर मरकूज है जिसके तहत पूरे समाज को फायदा हासिल होंगे। भारतीय बरामदकारों को बहुत से बुनियादी शोबों में भारतीय बरतानवी महसूलत मुकम्मल तौर पर खत्म किए जाने से बड़ा फायदा होगा। अभी तक डब्बाबंद खुराक पर 70% तक

0: करीब। भारत की सबसे बड़ी आलमी टेक्सटाइल नुमाइश भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो गई है। इस तकरीब का इफ्तिताह टेक्सटाइल के मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने किया। मीडिया से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि भारत टेक्स वजीर आजम का विजन है। उन्होंने बताया कि यह तकरीब अब एक बैन अल्कवामी शक्ल इख्तियार कर गई है और हर साल इसमें नुमाइश करने वालों, खरीदारों, फरोख्त करने वालों और उसको देखने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस साल इस तकरीब में 130 मुल्कों के 60,000 खरीदार और नुमाइश करने वाले शिरकत कर रहे हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत टैक्स में MSMEs और एंटरप्रेन्योर भी शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ मुल्कों के साथ किए गए आज़ाद तजारती समझौते भी टेक्सटाइल शोबे को फायदा पहुंचा रहे हैं।
1: दुनिया के 130 देशों से ऊपर बायर आए, अभी मोदी जी ने 56 देशों से FTA हो रहा, कुछ से हो गया है कुछ से बाकी। ये बताता है कि आज 60,000 से ऊपर एग्जीबिटर आए और सबसे बड़ी खासियत है इस एक्सपो में 90% MSME आए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार जो बायर आ रहे हैं ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे।
0: इफ्तिताही तकरीब में अलग अलग रियासतों के टेक्सटाइल वज़रा और टेक्सटाइल के वज़ीर मम्लिकत पवित्र मार्गरेटा ने भी शिरकत की। इस तकरीब में टेक्सटाइल, फैशन, पायदारी, टेक्नोलॉजी, इख्तरा, सरमायाकारी और बैन अल्कवामी तजारत के शोबों में भारत की बढ़ती हुई आलमी लीडरशिप को भी दिखाया जा रहा है। पार्लियामानी और अकलियती उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू आज दोहा के लिए रवाना हो गए। उनके दौरे का मकसद भारतीय हुकूमत और अवाम की तरफ से कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा सानी के इंतकाल पर ताजियत का इजहार करना है। वजारत खारजा ने बताया कि शेख अमीर का जदीद कतर की तामीर में अहम तरीन रोल था, वो भारत के करीबी दोस्त थे। जम्मू कश्मीर में हुकूमत ने कोढ़ की बीमारी को एक ऐसी बीमारी करार दिया है जिसके बारे में फौरी तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया जाना जरूरी है। यह ऐलान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हुक्म पर किया गया है। आकाशवाणी जम्मू के नामा निगार ने बताया है कि इस नई हिदायतनामे के तहत सभी सरकारी और प्राइवेट हिफ्जान सेहत इदारों को कोढ़ की बीमारी के हर तशखीस शुदा केस की रिपोर्ट नामजद सेहत हुकाम को देना लाजमी है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत के महकमे मौसमियात ने बिहार और ओडिशा में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे ने कहा है कि शुमाल मशरिकी भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और मगरबी बंगाल में कल तक यही सूरत हाल रहेगी। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और मगरबी उत्तर प्रदेश में भी इस महीने की 19 तारीख तक हल्की से औसत दर्जे की बारिश की पेशगोई है। मौसम महकमे ने बताया कि अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, गंगा के मगरबी बंगाल वाले इलाके, झारखंड, कर्नाटक और ओडिशा में अगले 2 से 3 दिन तक गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और हवाओं के झक्कड़ चलने के इम्कान है। फीफा वर्ल्ड कप में अमेरिका के टेक्सास के डालास स्टेडियम में आज रात सेमीफाइनल में फ्रांस का सामना स्पेन से होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे शुरू होगा। फ्रांस लगातार तीसरी मरतबा फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में अपनी जगह बनाना चाहेगा। दूसरी तरफ स्पेन 2010 में फीफा वर्ल्ड कप जीतने के बाद से पहली मर्तबा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने की कोशिश करेगा। फ्रांस क्वार्टर फाइनल में मराकश को 2-0 से हराकर, जबकि स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा है। मर्दों की भारतीय क्रिकेट टीम आज 3 एक रोजा बैन अल्कवामी मैचों की सीरीज के पहले मैच में मेजबान इंग्लैंड का सामना करेगी। यह मैच बर्मिंगम के एज वेस्टन मैदान में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक 3:30 बजे शुरू होगा। सीनियर खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा भारतीय टीम को मजबूती फराहम करने के लिए वापसी कर रहे हैं, जबकि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी टीम में दोबारा शामिल हो रहे हैं। भारत आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20 बैन अल्कवामी सीरीज में शिकस्त के बाद इस एक रोजा सीरीज में शानदार वापसी की कोशिश करेगा। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत ने आबनाए हुरमुज में हाल ही हमले में भारतीय जहाजियों के मारे जाने के बाद ईरान के सफारतकार को तलब किया है। भारत ने अक़वामे मुत्तहिदा रुकनियत के लिए फ़िलिस्तीन की कोशिश की हिमायत की है। उसने फ़िलिस्तीन और इसराइल के दरमियान जारी तनाज़े के 2 रियासती हल की एक बार फिर तायद की है। भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इक़्तिसादी और तजारती समझौते पर कल से अमल दरामद शुरू हो जाएगा। कपड़े की सनत से मुतालिक भारत की सबसे बड़ी आलमी नुमाइश भारत

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में हिंसा स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन को बाधित कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया। फलस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। फीफा विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात टेक्सस में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से। और क्रिकेट में भारत आज शाम बर्मिंघम में इंग्लैंड के साथ पहला एक दिवसीय मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है।
1: इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड
0: ने दिल्ली स्थित ईरान दूतावास के उप मिशन प्रमुख को तलब किया और इन हमलों के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एमटी अलबहिया पर सवार 12 भारतीय नागरिकों में से एक की मृत्यु हो गई है और एक घायल हो गया है। एमटी मुंबासा पर सवार 18 भारतीय नागरिकों में से 9 घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मिशन और दूतावास स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और प्रभावित भारतीय नाविकों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के संपर्क में है। भारत ने नाविकों को निशाना बनाकर किए गए हमलों की कड़ी निंदा की है। इससे होर्मुज जलडमरू मध्य से निर्बाध और सुरक्षित नौवहन बाधित हुआ है। भारत ने पश्चिम एशियाई क्षेत्र में हमलों की दोबारा शुरुआत और शत्रुता बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। साथ ही क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए हिंसा को तत्काल रोकने और संवाद तथा कूटनीति की ओर लौटने का आह्वान किया है। बयान में कहा गया है कि क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना बंद होना चाहिए, ताकि क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में निर्बाध नौवहन और व्यापार को जल्द से जल्द बहाल किया जा सके। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
1: इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये नाकेबंदी केवल ईरानी जहाजों और ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर लागू होगी। वहीं दूसरी ओर ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमेरिका के दावे को खारिज किया है। केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जोल्फघरी ने कहा कि ईरान किसी भी परिस्थिति में अमेरिका को होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देगा। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया है और फलस्तीन तथा इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया है। विदेश मंत्रालय में सचिव श्री प्रिया रंगनाथन ने कहा है कि भारत फलस्तीनी लोगों का लंबे समय से सहयोगी रहा है। उन्होंने कल ब्रसल्स में फलस्तीन डोनर ग्रुप की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने फलस्तीन के लोगों के लिए भारत की ओर से दी जा रही विकास संबंधी मदद पर जोर दिया। सुश्री रंगनाथन ने बताया कि भारत की परियोजनाएं जरूरतों पर आधारित हैं और मुख्य रूप से स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, क्षमता निर्माण और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित है। उन्होंने पुनर्वास, स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित कई नई परियोजनाओं की भी घोषणा की।

0: भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
1: भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता लागू होने से भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ाव और मजबूत होगा। यह समझौता आम लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। इस समझौते के लागू होने के बाद भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख उत्पादों पर लगने वाले शुल्क से पूरी तरह राहत मिलेगी। इस समय प्रोसेस्ड फूड पर 70%, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो पार्ट्स पर 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% और कपड़ा तथा परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाले शुल्क अब शून्य हो जाएंगे। इससे ब्रिटेन के बाजारों में भारतीय उत्पाद की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। वहीं किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के साथ साथ विनिर्माण क्षेत्र के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी और IT आधारित सेवाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंजीनियरिंग, दूरसंचार और परामर्श जैसे क्षेत्रों से जुड़े भारतीय सेवा प्रदाताओं को भी ब्रिटेन के बाजार में बेहतर अवसर मिलेंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर भारत सरकार और जनता की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आज दोहा के लिए रवाना हुए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमीर ने आधुनिक कतर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे भारत के घनिष्ठ मित्र थे। मंत्रालय ने कहा कि भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में उनके अमूल्य योगदान के लिए अमीर को हमेशा याद किया जाएगा। वियतनाम के फो क्वोक द्वीप के पास हुई नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि शव वियतनाम एयरलाइंस के जरिए हो ची मिन्ह सिटी से मुंबई लाए गए। इनमें से आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने बताया है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौते भी वस्त्र क्षेत्र को लाभ पहुंचा रहे हैं।
2: दुनिया के 130 देशों से ऊपर बायर आए हैं। अभी मोदी जी ने 56 देशों से FTA हो रहा, कुछ से हो गया है, कुछ से बाकी। ये बताता है कि आज 60,000 से ऊपर एग्जीबिटर आए हैं। और सबसे बड़ी खासियत है इस एक्सपो में 90% MSME आए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार जो बायर आ रहे हैं ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे।
0: उद्घाटन समारोह में वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा और विभिन्न राज्यों के वस्त्र मंत्रियों ने भी भाग लिया। ये कार्यक्रम कपड़ा, फैशन, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित कर रहा है। इस कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने निर्माण क्षेत्र सहित कई सुधार किए हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि अब कंटेनरों में उर्वरकों का परिवहन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा।
3: अगर हम फ्लाई ऐश का एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म बना सकते हैं तो देन वी कैन यूज फ्लाई ऐश इन इकोनॉमिक

0: वे सीमेंट में प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं या फिर रोड कंस्ट्रक्शन या किसी दूसरे कंस्ट्रक्शन में हम काम में ले सकते हैं। अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होने से उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पॉल्यूशन होता है। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म, फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है।
1: भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया विभाग के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के दोषियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली की एक अदालत द्वारा आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य लोगों को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी ठहराए जाने के फैसले का स्वागत किया। श्री भाटिया ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर वोट बैंक की राजनीति के लिए हुसैन का बचाव करने का आरोप लगाया।
2: बहुत जिम्मेदारी और प्रमुखता से एक बात मैं उठाना चाहूंगा, जजमेंट अभी पूरा पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन जो टिप्पणियां आई हैं सामने उनके आधार पे और जो घटिया राजनीति आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने करी है, वो आपके समक्ष न्यायालय की टिप्पणियों के बाद जरूर रखूंगा। इसमें जो प्रमुख अभियुक्त था ताहिर हुसैन, जब ये जघन्य अपराध हुआ तब वो आम आदमी पार्टी का पार्षद था निर्वाचित, अरविंद केजरीवाल का खासम खास।
1: जम्मू कश्मीर में जम्मू के एक स्पेशल राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण न्यायालय ने पाकिस्तान में मौजूद प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। ये वारंट पहलगाम आतंकी हमले की चल रही जांच से जुड़े एक मामले में जारी किया गया है। यह आदेश पहलगाम आतंकी हमले के मामले में एनआईए द्वारा सईद के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल करने के दो दिन बाद आया। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोमांस उत्पादक देश है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा फर्जी है और प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन का आयोजन हो रहा है। मंदिर प्रशासन, जिला अधिकारी और पुलिस सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रहे हैं, साथ ही भीड़ और ट्रैफिक का व्यवस्थित ढंग से सुनियंत्रित किया जा रहा है ताकि दर्शन आसानी से और बिना किसी परेशानी की हो सके। नव यौवन दर्शन के साथ ही रथ यात्रा से पहले की रस्में पूरी हो रही है। अब गुरुवार को गहरे धार्मिक उत्साह और भव्य समारोह के साथ विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू होगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन यायार ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @यायारNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। कल तक उत्तर पूर्वी भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इस महीने की 19 तारीख तक हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। फीफा विश्व कप में आज रात टेक्सास के डलास स्टेडियम में पहला सेमीफाइनल फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज बर्मिंघम के एस्बेस्टन मैदान पर खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम में बल्लेबाज विराट कोहली, रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। श्रृंखला का दूसरा मैच कार्डिफ में बृहस्पतिवार और तीसरा तथा अंतिम मैच 19 जुलाई को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में हिंसा स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन को बाधित कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया। फलस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के

0: समर्थन फिर से दोहराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
2: उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं। चप्पल का उपयोग ना करें क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहनें। रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है।
1: अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है और ये कानून के तहत दंडनीय है। वेस्ट मटेरियल को नजदीक के कूड़ेदान में ही फेंकें। सभी प्रकार के जैविक कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। जय जय बाबा बर्फानी।
3: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz पर, FM पहलगाम 100.1 MHz पर। श्रोताओं, अमरनाथ यात्रा 2026 का ये सफ़र एक अटूट आस्था और श्रद्धा का प्रतीक बना हुआ है। जहां अब तक 3,00,000 से अधिक भक्त पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। आज 14 जुलाई को जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से 5,000 से अधिक यात्रियों का नया जत्था कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पहलगाम और बालतल की तरफ रवाना हुआ है, जिसके लिए प्रशासन ने ड्रोन बेस्ड निगरानी और मल्टी लेयर सिक्योरिटी के व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा की पवित्रता और अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा जारी की गई निर्देशों का पालन करना और यात्री के लिए अनिवार्य है, हर किसी यात्री के लिए अनिवार्य है, जिसमें वैलिड रजिस्ट्रेशन परमिट का होना और प्लास्टिक फ्री यात्रा का बढ़ावा देना सबसे महत्वपूर्ण है।

0: प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं FM बालतल और FM पहलगाम के संग। श्रोताओं, पल पल के अपडेट्स के लिए हम आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। अभी हमारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं पहलगाम से हमारे संवाददाता एस तारिक साहब। जी तारिक साहब,
1: बहुत शुक्रिया। बाबा बर्फानी के भक्तों की आध्यात्मिक यात्रा आस्था, सफलता और सुखद माहौल में हजारों रूप से जारी है। तो हवाएं मौसम के बीच आज सुबह 4 बजे ननवन आधार शेवत से रोजा रवाना होने वाले हजारों भक्तों पर मुश्तमिल जत्था चंदनवारी से होते हुए अपने अगले पड़ाव शीशनाग और पंचतरणी पहुंच चुका है। इस क्रम में शीशनाग और पंचतरणी में पहले से मौजूद यात्री बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर चुके हैं। इधर जम्मू के भगवती नगर आधार शेवर से 5,335 यात्रियों पर मुश्तमिल पहलवान जत्था कश्मीर घाटी में प्रवेश कर चुका है। इनमें बालतल मार्ग के लिए 1,736 यात्री शामिल हैं, जबकि पहलगाम के प्राचीन मार्ग के लिए 139 छोटी बड़ी वाहनों में 3,599 यात्रियों पर मुश्तमिल जत्था कड़ी सुरक्षा इंतजाम के बीच अपने अपने पड़ाव पहुंच चुके हैं। पहलगाम पहुंचने वाले इन यात्रियों में 2,692 पुरुष, 774 महिला, 9 साधु, 24 साधवी, 16 बालक और 1 ट्रांसजेंडर यात्री शामिल था। मौसूल एहदाद शुमार के अनुसार 3 जुलाई से अब तक मजमुई तौर पर 2,53,814 भक्तों को बाबा बर्फानी के दर्शन का सौभाग्य हासिल हो चुका है, जबकि गुजशत रात दर्शन करने वाले यात्रियों की तादाद 26,403 रही। आज ये समाचार ये जाने तक तकरीबन 15,472 बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं और दर्शन का ये सिलसिला अनुरुद्ध से जारी है। इस तरह कुल तादाद 3,00,000 को तजावुज कर गई। प्रशासन के ओर से ननवन बेस कैंप समेत पूरे यात्रा मार्ग पर यात्रियों के लिए तमाम आवश्यक सहूलियात और जरूरी वस्तुओं की व्यवस्था की गई है। सरकारी और गैर सरकारी सैकड़ों लंगरों में यात्रियों के लिए विविध पकवान और भोजन की उचित व्यवस्था की गई है, जबकि सरकारी अधिकारियों के साथ साथ हजारों सेवादार भी यात्रियों की सेवा में लगे हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार यात्रा मार्ग पर फिलहाल मौसम अनुकूल बना हुआ है। तमाम पहाड़ी इलाकों में समय समय पर मौसम में परिवर्तन आता रहता है। मौकमा मौसमियात के मुताबिक इस समय पहलगाम से पवित्र गुफा तक दर्जे हरारत 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर पवित्र गुफा तक 3 सभी सुरक्षा घेरे कायम किए गए हैं। सुरक्षा बलों के जवान 24 घंटे पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात रहकर यात्रियों की यात्रा को सुरक्षित और सफल बनाने में मसरूफ है। इस तरह के मजबूत और संपूर्ण की मदद से प्रशासन और मुख्तलिफ लाइन विभाग बाहमी तालमेल के साथ काम कर रहे हैं, जहाँ सभी फैसले समन्वित तरीके से लिए जा रहे हैं। इसे पूरे तंत्र की निगरानी उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा आजाद खुद कर रहे हैं। जी
0: शुक्रिया जावेद साहब,
1: थैंक यू।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल और एफएम पहलगाम के संग। जम्मू भगवती नगर से जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पर जावेद मेहराब साहब। जी जावेद साहब,

यात्रा आज मंगलवार को भी उसी उत्साह, जोश और हर्ष उल्लास के साथ भगवती नगर के आधारेश्वर से सुबह तड़के रवाना हुई। सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच बाबा बर्फानी के फलक शिगाफ नारे तवी के खूबसूरत तट पर बने आधारेश्वर भगवती नगर को जोश और उत्साह भर रहे थे। याद रहे कि अब पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 2.5 लाख को भी पार कर चुका है और तीर्थ यात्रा का अभी तक दूसरा सप्ताह ही शुरू हुआ है। वही बात जम्मू के मंदिरों में पूजा अर्चना और भंडारों और लंगरों की धूम की करें तो यहाँ विभिन्न संस्थाएं, बाजार एसोसिएशंस और स्वयंसेवी संस्थाओं के अलावा आम लोग भी पूजा अर्चनाओं का पर्व सब करते नजर आ रहे हैं। मंदिरों, धर्मशालों में सेवा और तीर्थयात्रियों का ख्याल रखा जा रहा है। जम्मू में ट्रांजिट कैंप्स में पंजीकरण करते श्रद्धालु भी तीर्थयात्रियों की बुनियादी प्रक्रियाएं पूरी कर तीर्थयात्रा के लिए तैयारी भी कर रहे हैं। जम्मू बाबा बर्फानी का तीर्थयात्री का पर्व निहायत आस्था, विश्वास, खुशी और उसी जोश खरोश के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रशासन के अधिकारी, उनके साथ काम कर रहे छोटे कर्मचारी तीर्थयात्रियों के सफल आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। शहर में अनुशासित तरीके से तीर्थयात्री अपना सफर

0: कर रहे हैं, यहाँ ट्रैफिक डिपार्टमेंट पर में काम कर रहे पुलिस कर्मी भी हर सड़क पर ट्रैफिक को अनुशासित तरीके से चलाकर तीर्थ यात्रा में एक बड़ा रोल निभा रहे हैं। वहीं बात ट्रांजिट कैंप्स में बुनियादी इंतजाम की देखरेख की करें तो तीर्थ यात्रियों को दी जाने वाली व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना हर प्रतिदिन के साथ एक नए चैलेंज के साथ करना कोई आसान भी नहीं, लेकिन तीर्थ यात्रा में किस तरह से इस पर्व को बेहतर बनाया जाए और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं दी जाएं और उन्हें एकत्रित कर यात्रा के लिए तैयार करना, उनकी गाइडेंस करना, उनका ख्याल रखना और प्राथमिकता के साथ विश्वास और आस्था के भाव के साथ उनकी सेवा करना, और ये दर्शाता है कि तीर्थ यात्रा एक बेहतर मौका भी है अपनी मेहमान नवाजी दिखाने का। जम्मू कश्मीर की मेहमान नवाजी दुनिया भर में मशहूर है और उसी की एक कड़ी में जम्मू के लोग भी अपनी मेहमान नवाजी, अपनी सेवा भाव के साथ तीर्थ यात्रियों की सेवा कर रहे हैं। बात कुछ दिनों ही शुरू हुई राही बस सर्विस की करें तो लगातार चल रही ये बस सर्विस हर रोज तीर्थ यात्रियों को जम्मू भ्रमण करने का मौका देती है और पूरे जम्मू की विरासत, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, ऐतिहासिक मंदिर और यहाँ के कल्चर को देखने का तीर्थयात्रियों को मौका मिलता है। वहीं बाबा बर्फानी की तीर्थ यात्रा के दौरान अपनी बारी के वक्फे के दौरान लोग जो हैं, श्रद्धालु जो हैं, वो माता वैष्णो देवी, शिव खोड़ी और कई धार्मिक स्थलों का दौरा करते हैं और बुनियादी तौर पर जो तीर्थयात्री यहाँ पहुँच रहे हैं वो बेहतरीन इस तीर्थयात्रा का हिस्सा बनकर पर्व का खूब मजा ले रहे हैं। आज भी भगवती नगर से 5,335 तीर्थयात्री यात्रा के दोनों मार्गों की तरफ रवाना हुए, जिसमें पुरुषों की संख्या 3,911 थी और महिलाएं 1,288 थी। लगभग 232 वाहनों का काफिला यहाँ से रवाना होकर घाटी प्रवेश कर गया और उसी तरह से बराबर घाटी से भी तीर्थयात्री दर्शन कर वापस लौट रहे हैं, जिसकी वजह से ये तीर्थ यात्रा एक बेहतर पर्व के साथ मनाई जा रही है और यात्रा के दूसरे ही सप्ताह में बराबर जोश और खरोश पूरी तरह से बना हुआ है, जिससे यात्रा का ये पर्व शहर को न सिर्फ नई रौनक, नई खरीदारी, नई खूबसूरती बख्श रहा है, बल्कि तीर्थयात्रियों के आने से यहाँ की मेहमान नवाजी देश भर में पहुँच रही है।
1: शुक्रिया जावेद मेहराब साहब। श्रोताओं, ये थे जम्मू भगवती नगर से जावेद मेहराब साहब। जुड़े हुए हैं आप विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के संग, जो आप समाप्त कर रहे हैं FM बालतल और FM पहलगाम पर। श्रोताओं, पल पल के अपडेट्स हम आपके साथ साझा करते हैं और अब हमारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं गांधरबल से रहीम रिजवान साहब। जी रहीम रिजवान साहब
2: जी, श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा के बारे में हम अपने श्रोताओं को बालतल क्षेत्र के वातावरण एवं यात्रियों की गतिविधि के बारे में विस्तार से सूचना साझा करते हैं, ताकि बालतल मुखी मार्ग से पवित्र गुफा जाने वाले श्रद्धालुओं को सफर के दौरान कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। श्रोताओं, हम साथ ही आपको यहाँ के मौसम की स्थिति के बारे में भी महत्वपूर्ण सूचना देते हैं, क्योंकि बालतल मुखी मार्ग एक पहाड़ी क्षेत्र है एवं आपको ऊंचे पर्वतों के बीच 14 किलोमीटर का कठिन रास्ता तय करना पड़ता है। यहाँ मौसम का मिजाज पल पल में बदलता रहता है, लिहाजा रेन कोट साथ रखना ना भूलें, संयम एवं धीरज के साथ सफर करें, क्योंकि आपकी सुरक्षा प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण है। सुरक्षा के कड़े प्रबंध एवं व्यवस्थाएं देखकर हजारों की संख्या में श्रद्धालु आए रोज घाटी आगमन होकर पवित्र गुफा जाकर प्रार्थना करते हैं। इस बीच आज खुशगवार मौसम के बीच सुबह 7 बजे तक 11,599 यात्री बालतल बेस कैंप से पवित्र गुफा की तरफ रवाना हुए। दर्शन के लिए पवित्र गुफा जाने वाले इन श्रद्धालुओं में 8,855 पुरुष, 2,232 महिलाएं, 190 बालक बालिका, 50 साधु, 48 साधियां, 4 ट्रांसजेंडर एवं 210 सुरक्षा कर्मी शामिल थे। जय जयकारे के नारे बुलंद करते हुए श्रद्धालु जोश और जज्बे के साथ गुफा की ओर रवाना हुए।

बीच 3588 श्रद्धालु शिवलिंगम का दर्शन करके वापस बालतल बेस कैंप पहुंचे। दर्शन करके सुरक्षित वापस पहुंचने वाले इन श्रद्धालु में 2599 पुरुष, 873 महिलाएं, 40 बालक बालिका, 10 साधु, 7 साधियां, 2 ट्रांसजेंडर एवं 67 सुरक्षा कर्मी शामिल थे। श्रद्धालु ने आकाशवाणी को बताया कि इस वर्ष जिला प्रशासन ने यात्रियों के लिए यात्रा रूट के

0: 26 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल और एफएम पहलगाम के संग। अब हमारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता बानीहल से मोहम्मद तस्कीन साहब। जी तस्कीन साहब
1: जी शुक्रिया। 13वां बेज जो आज श्री अमरनाथ यात्रा का था, 5300 से जायद यात्रियों पर जो मुश्तमिल था, वो जो जम्मू से आज सुबह निकले थे तो वो करीबन 12 और 1:30 बजे के दरमियान यहाँ बानहाल सेक्टर से होकर कश्मीर की तरफ रवाना हुए। यानी इनका जो निज़ाम होता है, अलग अलग इंतजामिया होती है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव इनका कंट्रोल होता है, यहाँ तक जम्मू डिवीजन का होता है, जम्मू डिवीजन की इंतजामिया का होता है बानहाल तक, और यहाँ से काजीगुंड टनल क्रॉस करके इन्हें कश्मीर डिवीजन की इंतजामिया के सुपुर्द किया जाता। तो ये दोनों काफिले जो है करीबन 1:30 बजे के आसपास कश्मीर की तरफ रवाना किए गए बालतल और पहलगाम के रास्ते। इसी तरह जो वापस जो आज बालतल और पहलगाम से जो दोनों काफले आ रहे थे तो वो भी इस वक्त रामबन जिला क्रॉस करके उधमपुर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इनका जो दोनों काफलों का सुबह के अवकात में चंद्रकूट और रामबन में अलग अलग से रोका जाता है। यानी पहलगाम जो बालतल का यात्रा है उसे बानहाल में रोका जाता है, जबकि जो पहलगाम के रास्ते जाने वाली होती है उन्हें रामबन में रोका जाता है, चंद्रकूट के इलाके में, जहाँ पर उनके खाने पीने का इंतजाम होता है, ब्रेकफास्ट और दोपहर में जो लंच वगैरह का भी पूरा इंतजाम रखा गया है। इसी तरह जो वापस यात्री आ रहे हैं उन्होंने भी इन दोनों जगह पर विश्राम किया, वहां पर रुके, वहां पर खाना खाया। उसके बाद ये दोनों काफले सख्त जो सिक्योरिटी का सेटअप है, पुलिस है, सीआरपीएफ है और बाकी जो एजेंसीज है, इसके अलावा जो हाईवे के आसपास है जो पहाड़ी इलाके है इसके जो ऊपर से आर्मी की पूरी नजर बनी हुई है और पूरे हिफाजती इंतजाम में दोनों काफलों को कश्मीर से जम्मू और जम्मू से कश्मीर की तरफ रवाना किया गया। इस दौरान जो यात्रियों को हम रोजाना की बुनियादों पर ये इंफॉर्मेशन देते हैं कि जो और टूरिस्ट को जो कश्मीर की सयाहत पर आ रहे हैं उनके लिए कि जो 2 बजे के बाद जो जम्मू से गाड़ियां कश्मीर की तरफ आने वाली उन्हें 2 बजे तक ही चंद्रकूट से कश्मीर की तरफ चलने की इजाजत है और 3 बजे बाद उन्हें बानहाल में रोका जाता है। इसलिए ऐसे तमाम यात्री जो टूरिस्ट से उनको वो अपना इसी तरह से अपने प्लान को मरतब करें, ऐसे अपने वो जो उनका सफरी जो प्रोग्राम होता है तो उसको इसी तरह से वो बनाए कि 3 बजे से पहले पहले उनको बानहाल काजीगुंड टनल क्रॉस करना है। अगर वो इस टाइम में क्रॉस नहीं कर पाते तो उन्हें रात यहाँ बानहाल में ही गुजारना पड़ती है या रामबन के चंद्रकूट में, अगर 2 बजे बाद वो पहुंच जाते तो रामबन के चंद्रकूट में रोका जाता है। यहाँ पर बहुत इंतजाम है उनके लिए इंतजामिया की तरफ से और लंगर जो लगे हुए हैं उसके अलावा यात्रा निवास से 5000 से ज्यादा लोगों के लिए आला किस्म के जो इंतजाम है वहां पर, मतलब ठहरने की रहाइश के, तो वहां पर उनको रुकाया जाता है और बानहाल के यात्रा ग्राउंड में रुकाया जाता है। इसलिए यात्री जो भी सफर करें या जो टूरिस्ट हैं उन्होंने इस चीज को हर बार हर रोज वो अपने जहन में रखना है कि बानहाल टनल के बाद उन्हें 3 बजे के बाद कश्मीर की तरफ बढ़ने की किसी सूरत में इजाजत नहीं दी जाएगी। इस दौरान जो रामबन बानहाल सेक्टर इसमें बादल और धूप छाव का खेल जो है सुबह से जारी है और इस वक्त भी हवाएं चल रही और पूरे आसमान पर जो आकाश है पूरा बादलों से भरा हुआ है और इस दौरान जो ट्रैफिक सुबह से बंद था जिसे यात्रा की वजह से रोका जाता है वो इस वक्त जो काजीगुंड से 11:30 बजे बाद क्योंकि आज थोड़ा ताखिर हुआ क्रॉसिंग में तो उनको भी थोड़ा टाइम मतलब ज्यादा लगता है। तो करीबन 12 बजे के आसपास जो कश्मीर से ट्रैफिक है वो इस वक्त जम्मू की तरफ मुसाफिर ट्रैफिक बढ़ रहा है, जबकि सुबह 7 बजे से जो ट्रैफिक नगरोटा से छोड़ा गया है और 8 बजे से जो उधमपुर से ट्रैफिक छोड़ रहा है तो वो इस वक्त बानहाल और रामबन के इस सेक्टर से होकर कश्मीर की तरफ बढ़ रहा है। मजमू तौर पर मौसम बहुत खुशगवार और हाईवे पर ट्रैफिक जो है बिल्कुल किसी खलल किसी रुकावट के बगैर जारी है। जी
0: शुक्रिया आपका तस्कीन साहब। ये थे हमारे साथ बानिहल से मोहम्मद तस्कीन साहब।

जुड़े हुए हैं आप विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा के संग। आपको बता दें, आज दोपहर 2 बजे तक 18,397 तीर्थयात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए हैं, जिनमें पुरुषों की संख्या 12,855, महिला 4,835, बालक 327, साधु 97, साध्वी 14, ट्रांसजेंडर 4, सुरक्षा कर्मचारी 265। ऐसे कुल मिलाकर 18,397 तीर्थयात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए हैं।

0: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल और एफएम पहलगाम के संग। श्रोताओं, आपको बता दें, जहां हमारे यात्री दर्शन के लिए जा रहे हैं तो वहीं से एक बड़ी संख्या में यात्री दर्शन करके वापस लौट रहे हैं। वो अपने अनुभव, अपने विचार, प्रशासन के द्वारा क्या क्या सुविधा मिल रही है, आइए सुनते हैं क्या कहते हैं हमारे यात्री।
1: उत्तर प्रदेश रायबरेली से हूँ और मैं यहाँ पर अपनी चौथी बार 2023 से लगातार मैं अमरनाथ यात्रा करता हूँ, ड्यूटी करता हूँ। मतलब यहाँ पे मैंने दर्शन किया है। इसके पहले मैं इस साल जितना अच्छा यहाँ पर रोड बना, इसके पहले मैं आया हूँ तो यहाँ तंग रास्ता था, स्लाइडिंग की व्यवस्था बहुत थी, ये जो बगल में हमारे बाउंड्री वॉल लगी है ये भी नहीं था, बहुत सारी कैजुअलिटी भी होती थी। और जो इमरजेंसी, सबसे सराहनीय काम है जो इमरजेंसी एम्बुलेंस वगैरह इस रोड के बनने से एम्बुलेंस यहाँ पर आ जाती है और सही समय पर जो भी मान लो किसी का हार्ट पेशेंट हुआ या किसी प्रकार की समस्या होती है

0: तुरंत रिलीफ के लिए उसे बेस कैंप या श्रीनगर या जहाँ भी कैंप है, अच्छा व्यवस्था है, वहाँ पे रिलीफ के लिए भेजा जाता है। और बीआरओ ने जो काम किया वो वाकई में बहुत सराहनीय काम किया है, और इसका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मैं ऐसे सराहना करता हूँ कि और इसका अच्छा तो किया है, इम्प्रूवमेंट और ही अच्छा होगा। उसमें थोड़ा सा बीच में अभी नहीं हो पाया, मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट ईयर जब मैं दर्शन करने आऊंगा तो पूरा इस प्रकार की रोड ही हमें मिलेगी।
1: मेरा नाम राहुल कुशवाहा है। हम कन्नौज उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं और हमारा ये चौथी बार यात्रा है। और जितनी बार ही हम आते हैं तो बीआरओ का जो काम दिखता है वो बहुत ही बेहतर है, और पहले की तुलना में, आज की तुलना में बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि पहले तो गाड़ियाँ नहीं जा पाती थी, अब जैसे कि रोड चौड़ी हो गई है और इंटरलॉकिंग बिछ गई है, तो इस कारण से जैसे एम्बुलेंस की सुविधा, जैसे किसी यात्री को दुर्घटना हो गई या किसी तरह की चोट आ गई तो पर्याप्त तो तुरंत उपलब्ध है एम्बुलेंस वगैरह। तो इसके लिए बीआरओ का बहुत बहुत धन्यवाद कि हम जैसे यात्रियों की सुरक्षा में तैनात हैं।
2: श्रोताओं, शनशन अब के अपडेट्स के लिए हम आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। तो दर्शन अपडेट्स मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। आज 3 बजे तक 20,977 तीर्थ यात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए हैं, जिसमें पुरुषों की संख्या 14,560, महिला 5,655, बालक 352, साधु 105, साध्वी 16, ट्रांसजेंडर 4, सुरक्षा कर्मचारी 285। ऐसे कुल मिलाकर जो संख्या बनती है वो 20,977 तीर्थ यात्री की ये संख्या है जिन्होंने बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए हैं।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं FM बालतल और FM पहलगाम के संग। श्रोताओं, मौसम की स्थिति पर नज़र रखें तो अगले 3 दिनों तक मौसम गर्म और उमस भरा रहने का अनुमान है, लेकिन 18 जुलाई से 22 जुलाई के बीच संभावित बारिश को ध्यान में रखते हुए मौसम विभाग ने विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। यात्रियों को ऊंचे वाले क्षेत्रों में होने वाले हेल्थ चैलेंज से बचने के लिए थोड़ा थोड़ा करके चलने, पर्याप्त हाइड्रेशन और अपने साथ ज़रूरी मेडिकल किट रखने का सुझाव दिया गया है, ताकि वो किसी भी इमरजेंसी स्थिति में सुरक्षित रह सके। प्रशासनिक तौर पर रास्ते में जगह जगह मेडिकल कैंप्स और लंगर की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, लेकिन यात्रियों का जिम्मेदार व्यवहार और प्रकृति के प्रति सम्मान ही इस यात्रा को सफल और मंगलमय बनाता है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकलने वाले हर वक्त को नियमों का पालन करते हुए और लोकल वेदर अपडेट्स पर नज़र रखते हुए अपनी यात्रा को अंजाम देना चाहिए, ताकि ये अनुभव उनके जीवन का एक स्मरणीय और पवित्र पल बन सके।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल और एफएम पहलगाम के संग। श्रोताओं, आपको बता दें, अगर आप बालतल के मार्ग से जा रहे हैं तो आप ट्यून कर सकते हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, और अगर आप पहलगाम के मार्ग से जा रहे हैं तो आप ट्यून कर सकते हैं एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इसके अलावा हम डीटीएच की आराधना सर्विस न्यूज़ ऑन एयर के मोबाइल ऐप और प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी उपस्थित रहते हैं। श्रोताओं, आपको बता दें, अगर आपको कोई भी प्रश्न, कोई विचार, अनुभव हमारे साथ साझा करना चाहेंगे तो हमारी हेल्पलाइन नंबर जो है 9596990954 9596990954। हमारे पास ईमेल आईडी भी है जिस पे आप अपने अनुभव विचार साझा कर सकते हैं थ्रू ईमेल आईडी जो है akashvanibaltal@gmail.com akashvanibaltal@gmail.com। आप टोल फ्री नंबर नोट भी कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर जो हमें है श्रीनगर के लिए 1800-180-7199 1800-180-7199। टोल फ्री नंबर जो जम्मू के लिए है 1800-180-7198 1800-180-7198। शनशन के अपडेट्स आप तक पहुंचाने के लिए हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं।

हेलो एवरीवन, जय शंकर महाराज। एंड नए साल की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। भोले शंकर आपके जीवन में खुशियां दे, स्वस्थ रखे, तंदुरुस्त रखे। आने वाला साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए। एंड हाँ, आप लोगों से सिर्फ ये विनती रहेगी कि गाने को पूरा देखे, शुरू से लेकर एंड तक। एंड मेरे लिए नहीं देखना तो भोले शंकर के लिए जरूर देखना, गाना पूरा देखना। एंड अगर आपका दिल करेगा तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। जय शंकर, जय महाराज।

0: अरे भाई कहाँ जा रहे हो?
1: मंदिर जा रहा हूँ।
0: मंदिर तो बंद है, मंदिर पूरे एक साल बाद खुलेगा।

0: और जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।
2: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं FM बालतल और FM पहलगाम के संग। आज 4 बजे तक 22,931 तीर्थ यात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए हैं, जिसमें पुरुषों की संख्या 15,854, महिला 6,270, बालक 367, साधु 170, साधु 117, साध्वी 16, ट्रांसजेंडर 7, सुरक्षा कर्मचारी 300, ऐसे कुल मिला के 22,931 तीर्थ यात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए हैं। एक बार मैं फिर आपको ये साझा करना चाहूँगी दर्शन अपडेट्स। जो हमारे पुरुषों की संख्या है 15,854, महिला 6,270, बालक 367, साधु 117, साध्वी 16, ट्रांसजेंडर 7, सुरक्षा कर्मचारी 300, ऐसे जो कुल मिला के संख्या है वो 22,931 तीर्थ यात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए हैं।

0: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल और एफएम पहलगाम के संग। श्रोताओं, शनशन के अपडेट्स लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं प्रातः 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। तो 4 बजे तक जो हमारे पास अपडेट आया है आपके साथ साझा करना चाहेंगे। ये 22,931 तीर्थ यात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन जो है प्राप्त किए हैं। संख्या की बात करें, पुरुषों की संख्या 15,854, महिलाएँ 6,270, बालक 367, साधु 117, साध्वी 16 और ट्रांसजेंडर जो हैं 7, सुरक्षा कर्मचारी 300, ऐसी संख्या बनती हैं 22,931 तीर्थ यात्रियों ने 4 बजे तक बाबा भोलेनाथ के दर्शन पाए हैं।
1: जुड़े हुए हैं आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के साथ। श्रोताओं, आइए सुनते हैं हम बालतल बेस कैंप में रिकॉर्ड की गई आरती।

सभी भक्तजन भोले बाबा के चरणों में बैठकर भोले बाबा की पवित्र आरती का दर्शन कर रहे हैं, आरती श्रवण कर रहे हैं। आप सभी भक्तजन बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ, प्रीति के साथ, आनंद मन से भोले बाबा के भजन का ध्यान करेंगे। बोलिए।

0: बोलिए शंकर भगवान के
1: जय,
0: धर्म के
1: जय,
0: अधर्म का
1: नाश हो,
0: प्राणियों में
1: सद्भाव हो,
0: विश्व का
1: कल्याण हो,
0: गौ माता की
1: जय,
0: मात पिता की
1: जय,
0: गुरु जनों की
1: जय,
0: सभी संतों की
1: जय,
0: सभी भक्तों की
1: जय,
0: सत्य सनातन धर्म की
1: जय,
0: आज के आनंद की
1: जय,
0: भारत माता की
1: जय,
0: शंकर भगवान की
1: जय,
0: शंकर भगवान के परिवार की
1: जय,
0: शंकर भगवान के गणों की
1: जय,
0: शंकर भगवान के भक्तों की
1: जय,
0: अमरनाथ स्वामी की
1: जय,
0: बाबा बर्फानी की
1: जय,
0: नमः पार्वती पते।

0: ¡Gay!
1: Ya
2: श्रोताओं, आप बालतल में रिकॉर्ड की गई आरती समाप्त कर रहे थे।
3: जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
4: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए

0: ढेर सारा पानी पिएं।
1: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्टपेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्रीपेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा।

0: होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्ट पेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्री पेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा।
1: श्रोताओं जुड़े हुए हैं आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के संग। जी हाँ, आपको बता दें ये विशेष प्रसारण आप समाप्त कर रहे हैं FM बालतल और FM पहलगाम के संग। जी हाँ, 4 बजे का अपडेट एक बार फिर आपके साथ साझा करेगी पजमान। जी पजमान
2: जी, जिसमें पुरुषों की संख्या 15,856, महिला 6,270, बालक 367, साधु 117
1: जी,
2: साध्वी 16, ट्रांसजेंडर 7, सुरक्षा कर्मचारी 300, जो कुल मिला के जो संख्या बनती है वो है 22,931। श्रोताओं, इसी के साथ ही हमारी आज की सभा समाप्त होती है। आपको बता दें कि श्री अमरनाथ जी यात्रा के इस विशेष प्रसारण में हमारे साथ बालतल में हमारे साथी इंजीनियर्स थे इरशाद अहमद लोन, जावेद अहमद लोन और मोहम्मद सलीम। मैं आपकी साथी उद्घोषक पजमान फेरोज और मेरे साथ उद्घोषक शाहिना ऋषि।
1: जी श्रोताओ, इस विशेष प्रसारण के प्रस्तुतकर्ता श्री वसीम फारूकवानी और श्री गुलाम रसूल आखून। यात्रा का विशेष प्रसारण लिए हम आपकी सेवा में दोबारा उपस्थित होंगे। जब तक के लिए शुभ यात्रा,
3: शुभ रात्रि, जय हिंद।

अब धनुष यज्ञ का समाचार सुनते ही मुनि विश्वामित्र राम लक्ष्मण को साथ ले जनकपुर की ओर चल देते हैं।

ठरता। बे हस्तरूपी कमल थी, अक्षमाला मणकानी माला तथा कमंडल निधान करणारा सर्वोत्तम ब्रह्मचारिणी देवी हमारा ऊपर प्रसन्न था। ये बे शब्दों खास समझवा जेवा, पहलू से अक्षमाला, ए से वर्णमाला कि जेमा अथी माड़ी ने क्ष सुधीना बधाज स्वरूपों वर्णों ना प्रतिनिधि रूप ये मणका ये धरावनारी माला ये अक्षमाला अने कमंडल ब्रह्मचारिणी जी नु सर्वशास्त्रों सार अने अमृत नु ये प्रतीक अक्षमाला। आ प्रकार नी माला ने अनेक देव देवीओ जेवा के ब्रह्माजी अग्नि दुर्गा आदि ना हाथ में मुख्यतः जोवा मां आवे छे। विशेष करीने एमां रुद्राक्ष रत्न स्फटिक आदि ना मणकाओ गोथेला होय छे। आ ब्रह्मचारिणी देवी सत चित आनंद एवा ब्रह्म स्वरूप नी प्राप्ति करावानो स्वभाव धरावे छे, एथी ब्रह्मचारिणी कहेवामां आवे छे। आ महादेवीनो दिव्य स्वरूप एने माटे आपणे दुर्गाजीना दिव्य मंत्रो अने नाम मंत्रोनो उच्चारण करिए, जेथी राष्ट्र विश्व अने सौनु मंगल थाय सुमंगल थाय। दुर्गायै नमः। दुर्गा द्वात्रिंशन्नाममाला।

अर्थ ए भगवती दुर्गा नो जय था। ए दुर्गा पार्वती जी संकट अने पीड़ा नो विनिवारण करना छे, मुश्किली लावनार आपत्तियोनु निवारण करनारा, दुर्गम नामना राक्षसनो नाश करनारा, कष्टपूर्वकनी साधना थी सिद्ध थनारा, मुसीबतोना ए संहारक छे, अभागिया लोकोनो उद्धार करनारा, विपत्तियोने हणनारा, दुर्बोर दुष्ट ज्ञानना निवारक, दुर्ग्ने एवा ज्ञानने अपनारा, विपत्तिजनक दैत्योना जगतने माटे दावानल देवा छे, नेथी दुर्ग दैत्य लोक दावानला कहेवाय छे। ए माताजी दुष्प्राप्य छे, एमनो प्रकाश कष्टपूर्वकनी तपश्चर्याथी पण दुर्गम होय छे, प्राप्त करवा कठिन छे, आत्मस्वरूप छे, मुश्किली जनक मार्गमा ए उपाय बतावनारा छे। दुर्गम विद्या स्वरूप अने दुर्गम साधनाथी तमनो आश्रय मेळवी शकाय छे एवा ए परांबाने अमे प्रणाम करीए छे। वळी

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध। आराधना।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।